फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के

0: दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
2: सोचो कि आज का दिन फिर नहीं आएगा। जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है समय। समय जो दिखाई भी नहीं पड़ता, समय जिसकी कोई परिभाषा भी नहीं की जा सकती, समय जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक घेरे हुए है, वैसे जैसे मछली को सागर घेरे हुए है, लेकिन जिसका ना हमें स्पर्श होता है, न जो हमें दिखाई पड़ता है, न जिसका हम कोई स्वाद ही ले सकते हैं। हम निरंतर उसकी बात करते हैं कि वह है, लेकिन जैसे ही पकड़ने जाते हैं परिभाषा में, हाथ से छूट जाता है। ऑगस्टीन ने कहा है कि समय बड़ा अद्भुत है। जब मुझसे कोई पूछता नहीं तो मैं जानता हूं कि समय क्या है, और जब कोई पूछता है तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं। आप भी जानते हैं कि समय क्या है, पूछे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मछलियों को भी सागर समझ में नहीं आता। जब तक मछली को सागर के किनारे कोई उठाकर फेंक न दे, तब तक मछली को सागर का पता भी नहीं चलता। मछली पैदा हो और सागर में ही मर जाए तो उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि सागर क्या था, क्योंकि जिसे जानना है उससे थोड़ी दूरी अवश्य चाहिए। मनुष्य को ऐसा ही घेरे हुए है, तो सागर से बाहर फेंका जा सकता है, परंतु मनुष्य को समय से बाहर फेंकना इतना आसान नहीं है। समय कम है या समय नहीं रह गया, इसका जीवन में कभी कभी एहसास अवश्य होता है। परीक्षा देते समय जब अंतिम प्रश्न पूरा होना नहीं चाहता, या यूं कहिए कि जल्दी जल्दी लिखने पर भी पूर्ण करना संभव नजर नहीं आता, तो जो परेशानी होती है, जो छटपटाहट होती है, वह पानी से बाहर फेंकी गई मछली के कष्ट के यद्यपि बराबर तो नहीं है, फिर भी समय का एहसास विद्यार्थी को व्याकुल तो अवश्य कर ही देता है। समय का हम सब उपयोग करते हैं, लेकिन समय क्या है नहीं है। मछली भी सागर का उपयोग करती है, लेकिन सागर क्या है उसको भी पता नहीं। उपयोग करते हैं लेकिन बिना जाने उसमें भूल चूक की संभावनाएं हैं। भूल चूक होगी ही, उपयोग कर सकते हैं लेकिन भूल होगी। समय को हम जानते नहीं।

0: इसलिए हम जो भी इसमें करते हैं उसमें अनेकों भूलें हो जाती हैं। पहली भूल तो यह हो जाती है कि हम सबको यह ख्याल बना रहता है कि समय काफी है। यह पहली भूल है, पर्याप्त समय है। समय पर्याप्त नहीं है, समय सदा पर्याप्त है और जो करना है उसके लिए समय थोड़ा है ही उसे व्यतीत कर रहे हैं और जो विराट है उसको टालते चले जाते हैं। तो तत्काल करते हैं और सार्थक को हम काल पर छोड़ देते हैं। समय के कुछ लक्षण हैं। एक कि आपको एक क्षण से ज्यादा कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। आपके हाथ में एक क्षण ही होता है, बस जाता है तब दूसरा मिलता है, जब दूसरा निकल जाता है तब तीसरा। आपके हाथ में दो क्षण एक साथ कभी नहीं होते। समय भी बड़ा कैलकुलेटर है, समय से ज्यादा सही गिनती करने वाला कोई नहीं। एक एक व्यक्ति को एक एक क्षण से ज्यादा कभी नहीं मिलता, धोखा नहीं दे सकता। कोई कितना ही बड़ा योगी हो या कितना ही बड़ा धनी हो और कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, वह समय को धोखा नहीं दे सकता कि उससे दो क्षण एक साथ ले ले, बस एक ही क्षण हाथ में आता है। घड़ी के कांटे को देखें, एक एक सेकंड ही आगे बढ़ता है, दो सेकंड कभी नहीं बढ़ता। हाँ, घड़ी खराब हो गई हो तो हो भी सकता है। वहां यह नहीं भूलना चाहिए कि घड़ी मानव निर्मित है, पर समय मनुष्य ने नहीं बनाया। वह तो एक बार ही एक ही क्षण मिलेगा। सुबह का एक घंटा गंवा दीजिए, फिर पूरा दिन उसका आखेट करते रहिए। उसे पुनः पा लेने के लिए आपको जी तोड़ कोशिश करनी होगी, और मिलेगा भी तो आपको प्रतिक्षण जो मिल रहा है उसी के बदले में। हाँ, उसी के बदले में।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए भजनों को।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए भजनों को।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने सुना सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए भजनों को, और इसी के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है टमाटर एवं बैंगन में उकठा रोग नियंत्रण के उपाय। वार्ताकार हैं मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़।
1: भाई जय जवाहर, राम राम। आज हम चर्चा करबो बैगन और टमाटर में एक मुख्य बीमारी होती है उकठा बीमारी, ओकर निदान कैसे किया जाए, ओकर पहचान की कैसे किया जाए, काबर की है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है। तो मैं चर्चा कर रहा कि सबसे पहले टमाटर में जो उकठा बीमारी होते वो दो तरीके के होते, एक जीवाणु जनित भी होते और एक फफूंद जनित भी होते। सोलेनेसी में मिर्च टमाटर बैगन ये तीनों में भी होते, तो लक्षण लगभग समानता रहते। तो सबसे पहले हमन बात करबो कि जो जीवाणु जनित उकठा होते वह कैसे होते। तो किसान बंधु, जो जीवाणु जनित उकठा रोग होते ओकर जो पहचान ये है कि पौधा ग्रीन स्थिति में जब हरा हुए रहते और मुरझाए के शुरू होते, सबसे पहले वहाँ एक तरीके से पत्ती और ऊपर से सुखा जाते और ऊपर से नीचे की ओर आ जाते, पत्ती झुरमुरा जाते। सडनली क्या होते कि 2-3-4-5 दिन के अंदर में पत्ती अचानक से मुरझा जाते और हरा स्थिति से ही मुरझाते। यह बैक्टीरियल विल्ट जो जीवाणु जनित कथा लेकर एक पहचान हुई, लेकिन सिर्फ लक्षण के आधार पे ही पहचान पाना वाला मुश्किल है। तो एकल लिए एक हमन एक छोटे टेस्ट करथन। तो किसान भाई का करथन कि जहा इसने मुरझात है ओला हमन जो संक्रमित पौधा है ओला जड़ से निकाल थन और पानी में थोड़ा वास करथन। ओकर बाद एक कांच के ग्लास लेबो और ओमे साफ पानी भर देबो। फिर जो जो जड़ भाग रहते वो जो तना और जहां से जमीन से कांटेक्ट में रहते वो भाग ले लेबो और कट करबो। कट करके हमन ओला वो ग्लास में कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए स्थिर रूप से रख देबो। ओला बिना डिस्टर्ब किए हुए किसी प्रकार से ग्लास ला हिलाना डुलाना नहीं है। तो कुछ समय बाद स्थिति ऐसे होते कि वहां ट्रांसपेरेंट टाइप के एक धार की तरह से ओमे ऊज निकलते। अगर एकर पहचान होगी तो यह बैक्टीरियल विल्ट होइस। अब बैक्टीरियल विल्ट अब फफूंद जनित विल्ट होते, अब एकर पहचान करना है तो फफूंद जनित जो उकठा रोग होते एमे भी पौधा मुरझाते। शुरू तो पौधा लगभग थोड़ा पीला पड़ के पत्ती है मुरझाए कस करते और उग्र स्थिति में पत्ती यह भी झड़ते भी, लेकिन यह बैक्टीरियल विल्ट के तुलना में थोड़ा धीरे धीरे होते। तो अब एकर पहचान करने के लिए अब एकर भी टेस्ट करबो तो एला का करबो कि जो जड़ है उस संक्रमित पौधा के ओला भी निकालबो और फिर उसने हमन पानी में थोड़ा धो लेबो और एकर बाद जड़ ला हमन क्रॉस करके काट के देखबो। तो अगर जो जड़ के भाग में वेस्कुलर डिस्क्रोशन कथन, मतलब वो जो जड़ वाला भाग है उसमें भूरा काला कलर के दिखाई दे ही, अगर भूरा काला कलर के दिखाई दे दिस तो यह फंगल विल्ट हुईस। अब एकर अब हमन साइंटिफिक रूप से पहचान कर दे रहे, अब एकर निदान करबो। तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक थे ओला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हमन मिक्स करके ड्रेंचिंग करबो और नेक्स्ट टाइम जब कोई भी हमन सोलेनेसी इस तरीके के

0: हाँ, एक बार फसल आ गए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हमन एकर बीज उपचारित करबो, थरहा उपचारित करबो, मृदा उपचारित करबो, तब लगाबो। लेकिन खड़ी फसल में हमन ड्रेंचिंग ही कर सकत हन, तो किसान भाई ड्रेंचिंग के माध्यम से कुछ हद तक हमन कंट्रोल कर सकत हन। फंगल विल्ट के जब निदान के बाद इस, तो ओकर लिए जो टेबुकोनाजोल फफूंद नाशी रसायन होते, ओकर लगभग 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लेबो अपन ल जतका क्वांटिटी में चाहिए, और ओला हमन सिंचाई के माध्यम से ड्रेंचिंग कर देबो। अगर ड्रिप उपलब्ध है तो ड्रिप के माध्यम से चला देबो, और इस तरीके से हमन निदान पा जाबो। लेकिन किसान भाई एक चीज जरूर ध्यान रखिया कि अगर बार बार वही फसल ला ले था तो नेक्स्ट टाइम में कोशिश करा कि फसल चक्र अपनावा, और फसल चक्र नहीं अपना पा था तो जे फफूंद नाशक जो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास है एकर प्रयोग विशेष रूप से करा। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में चर्चा का विषय था टमाटर एवं बैंगन में उकठा रोग नियंत्रण के उपाय। वार्ताकार थे मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़। इसी के साथ कृषि चर्चा अब संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा।

6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 6:50 पर होगा देश गान संस्कृत समाचार। 6:55 पर 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। झरोखा कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसमें चर्चा का विषय होगा आयुष्मान भारत योजना। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर आप सुनेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभात सुबह 8 बजे 8:15 पर। मॉर्निंग न्यूज़ आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोकरंजनी फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे 11 बजे एवं पुनः 12 बजे। ये अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 11:55 पर एवं 9:55 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। पॉप टाइम का समय होगा 5:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात होगी HIV एड्स के खतरे के प्रति सावधान रहें, साथ ही होगा घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर। चौपाल कार्यक्रम का समय होगा 7:20 पर, जिसमें अच्छी बात होगी रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कृषि में जैविक खादों का प्रयोग। आज की नसीहत में आप सुनेंगे छोटे किसानों को समृद्धि का रास्ता, कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। यार फिल्मी गीत कार्यक्रम

अब सुनेंगे 8:20 पर समाचार संध्या का समय होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गुलदस्ता गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण आप पुनः 7:55 पर एवं 10 बजे सुन सकेंगे। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 66वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं सुरेश वाटकर।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। इसी के साथ रामचरितमानस गान अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए देशगान। देशगान में सुनिए ग्रिगसन बात को।

देशगान में आज आप सुन रहे थे ग्रिक्सन बाद को, और इसके साथ देशगान अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और

0: आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप हमें सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, सदाबहार नगमों की महक के साथ जुड़िए हमारे साथ चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में। सुनिए पहली पेशकश में फिल्म पुकार का ये गीत, जिसे गाया है शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के स्वर हैं। इस गीत को लिखा है मजरू ने, साथी जावेद अख्तर ने, ए आर रहमान का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना।

हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म चाइना गेट का गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और शंकर महादेवन ने। समीर के बोल थे, अनुमलिक का संगीत था।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: मोहरा फिल्म का गीत सुनिए, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, विजू शाह का संगीत है।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं।

0: विक्ट्री,
1: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल,
0: 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का गीत, जिसे गाया था कुमार सानू और अनु मलिक ने। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था, अनु मलिक का संगीत था, और इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरोखा।

कार्यक्रम झरोखा लेकर हाजिर हूँ आपकी रेडियो दो जिग्नेश्वरी यादव। आप सभी को मेरा नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोता मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति अच्छा स्वास्थ्य है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाते हैं। लेकिन कोई गंभीर बीमारी अचानक ही आ जाती है, बताकर नहीं आती, और उस दौरान हमें स्वास्थ्य के साथ इलाज के बढ़ते खर्च की भी चिंता होने लगती है। कई बार एक बीमारी पर वर्षों की जमा पूंजी खर्च हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर सन 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना देश के पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इस सुविधा का लाभ देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी हॉस्पिटल में किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत हृदय रोग, कैंसर, किडनी, न्यूरोसर्जरी, प्रसूति सहित अनेक गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। साथियों, इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पात्र लाभार्थियों को इलाज के लिए अस्पताल में भारी भरकम राशि जमा कराने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए अपनी पात्रता जानना जरूरी है, और यह जानकारी आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट, आयुष्मान ऐप या अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। और प्राप्त पात्र होने पर आयुष्मान कार्ड बनवाना आसान है। दोस्तों, स्वास्थ्य केवल व्यक्ति की ही नहीं पूरे परिवार की पूंजी है। जब परिवार स्वस्थ होगा तभी समाज और राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए सरकार के इस जनहितकारी योजना की जानकारी स्वयं भी रखें और अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं, और ऐसे भारत के निर्माण में भागीदारी निभाएं जहां पैसों की मजबूरी नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार बने। दोस्तों, अब वक्त है गीत संगीत का। चलते हैं और सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम झरोखा से अपनी रेडियो दोस्त ढुनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फिरन लाल वर्मा को।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुँचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

कार्यक्रम बाजी मांदर में आज आपने सुना फिरन लाल वर्मा और साथियों को। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से FM 100.7 बिघस पर। 7:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित की जाएंगी।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कुछ ही पलों में 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुनेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे 9 बजे, 11 बजे और पुनः 12 बजे। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे 10:30 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट पॉप टाइम। आप सुनेंगे शाम 5:10 पर, 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात होगी HIV एड्स के खतरे के प्रति सदैव सावधान रहे, साथ ही होगा घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कृषि में जैविक खादों का प्रयोग। साथ ही आज की नसीहत में आप सुनेंगे छोटे किसानों को समृद्धि का रास्ता, कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर, फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप पुनः सुबह 10 बजे प्राप्त कर सकेंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8 बजने को है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पना

0: अपनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पी के मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

0: और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साक का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल, परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी।

संगी हो मेघा के मया बरसत हे, नदिया नरवा तरिया खेत सबो भरे हे। रोपा के हरियर धान बुने के बेरा है और बेरा है लोकगीत सुने के, ईमेल चिट्ठी पत्री ला शामिल करे के, काबर की अभी बेरा होगी से कार्यक्रम लोक रंजनी के। जय जोहार संगवारी, झोंका मोर जोहार, आज आप मन के साथ हूँ कार्यक्रम लोकरंजनी माँ डिनेश्वरी यादव और कार्यक्रम माँ स्वागत है संगी हो। हमार पहली प्रस्तुति माँ सुना ए लोकगीत ला जिला गईन हवाए राजकुमार अग्रवाल और ए लोकगीत ला सुना चाहत हैं मदनपुर कवर्धाले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल नेहरूवाड़ भाटापारले, प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र, ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति शिवांश वर्मा, बागभारा भदरसीले, पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, ग्राम मेचका सोंढू नगरीले, भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, निखिल नाग, तरुणदीप नाग, गणेशधाम परसुली पोस्ट खेदा बाजारले, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास देवेश, धनवंतीन बाई, मोतीम बाई मानिकपुरी, ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरिया बनले, योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी यामिनी मुस्कान, हर्षिता साहू, महामाया चौक मेघापारा ले, रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल। सुनो संगवारी अपन पसंद के लोकगीत ला।

संगी हो बादर उमर थे पानी बरसे के पहली अव हमार लोकगीत ला सुनाओ कान देके संगी अव एक गीत ला गईन हवाए दुखिया बाई और धुरवा राम मरकाम अव सुनना चाहते हैं लोकगीत ला बाजार पारा भेमे तरा ले भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा पीपर परा पालचो मंगेली ले उत्तरा कुमार दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका भानुप्रिया दिवाकर बेमे तराले सुरेश कुमार सारथी कमल कांत वीरेंद्र वृजकांत सारथी मयंक रेडियो श्रोता सा नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा औ दामिनी वर्मा यही गीतला सुनना चाहते साले भाठा महासमुद्र जीतू ध्रुव केवल ध्रुव किरण दिव्यांशी खेमु ध्रुव औ यही गीतला सुनना चाहते हैं बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास ओमिन उत्तरा प्रमिला यमुना जमुना अंजू मंजू युवती ग्राम गोड़मर्रा पोस्ट सूर्यगांव तहसील डोंडी लोहारा बालोदले देव प्रसाद देवदास राम अवतार सोनू मोनू ललेश्वरी देवदास नया गंजवाड भाटापारा छत्तीसगढ़ विष्णु साहू पूरब साहू वीरा साहू हर्ष साहू कुमकुम योगेश्वरी करी भदरले पुरुषोत्तम निर्मलकर हमेश्वर साहू यशवंत सिन्हा घनशु सिन्हा बुंदेल राम ठाकुर विनेंद्र कुमार सूर्यवंशी महादेव ठाकुर गेंदलाल साहू भाटापारा छत्तीसगढ़ हेमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ नीतीश कुमार तनुजा दिवांगन निशांत लखनलाल दिवांगन सावित्री दिवांगन उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती बघेल लधान पंडरिया छत्तीसगढ़ मिठ्ठू मुड़ा चौक दुर्गा चौक रायगढ़ ले गेंदला श्रीवास कौशल श्रीवास बिहारी पटेल लक्ष्मी बरेट लक्ष्मण वाधवानी आओ गेंदू सुनाओ ए लोग गीतला

संगी हो पानी हा तो रोजेज गिरत हे अउ ए लोकगीत हा घलो कहत हवय बरसा आगे। संगी हो ए लोकगीत ला सुनाओ जेला गईन हे बुद्धि सागर शर्मा अउ देवेंद्र शर्मा। ए गीत ला सुनना चाहत हे ग्राम परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी खुमेंद्र तुषारनी मसिया अरमरी खुर्द जिला दुर्ग ले चुरामलाल वाडे जनीवाडे विवेक कुमार नेहा वाडते अमरपुर पेंड्रा ले रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि।

लवी श्रीवास्तव, इंदिरा नगर रायगढ़ शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। ई गीत ला सुना चाहते धमधा ग्राम सुखरी कलाले अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी ओशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल। नानघाट कातल बोलले भागसिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, कर्मा चौक लोहारडी, जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ ले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत निशांत। नारायणपुर ले दिनेश्वरी बंजारे, मनीष कुमार बंजारे, अड़ार नांदघाट ले माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश, दीपेश वर्मा, हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री। और यही गीत ला सुनना चाहते छत्रपति संभाजी नगर ले राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र औ रौनक सेन। सुनाओ अपन पसंद के लोकगीत ला।

संगी हो अगला लोकगीत ला सुना जेला गईन हमें लता खापर्डे और लोकगीत ला सुना चाहते कोका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मुरस जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंघेल नंदनी जंघेल यही गीत ला सुना चाहते अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जयमंत्री केवट अंजलि रुद्राणी कृष्णा केवट किकिर मेटा बिलहारी पाटन ले संतोष शर्मा रुक्मणी शर्मा गुरामी डोंडी लोहारा बालोदले पीयूष जोहत्री कोमल नेताम जुनवानी दुर्गले सुरित रमेश साहू बेमेतराले ईश्वरी प्रसाद साहू महामायापारा ग्राम दरचूराले फिरंता साहू दुलौरिन कामेश्वरी प्रीतम कुमार साहू पलारी रोहासीले डगेसर राम गौरव नूतन घनश्याम साहू अलका जानवी शिवाजी चौक राजीमले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कृष अमरपुर पिंडराले दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल रेखा श्वेता सुरुचि दिशा लबी बगबुडुआ पथरियाले नरेन नेताम कुसुम प्रोनिका प्रणामिका उत्कर्ष नेताम सुनो अपन पसंद के लोकगीत ला

संगी हो रिमझिम बरसा मा भिंजात हवय लोकगीत हा जिला गईन हवय भगवती साहू कर संगी मनता आवा सुनथन ए लोकगीत ला जिला सुनना चाहते ग्राम बंगला मटिया बालोत ले सुकुमार अंगारे अंजनी त्र्यंबिका लेना अंशुमाला आशुतोष अंगारे भाटापारा दत्रेंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक झावेंद्र महादेव घाट अमलेश्वरे डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज सुचला ज्योति रियांश ठाकुर भरी टोला डोंडी ले नमित कुमार पीहू नीतू मुरली गौतम भाटापारले दान सिंह रावत पद्मिनी रावत शुभम सौरभ रावत शिंगिरिशी महानदी सिंहापर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले मिथिलेश दिवांगन मधु दिवांगन हिमांशु औ अंकित दिवांगन भागवत दिवांगन पदुम दिवांगन सुनैना पिंकी यश शीतल प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती युवराज गीता घासी मामा रामचंद दिवांगन कोष्टापारा जुड़ा चौक सरंगपाले रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन सिया जैन कल्पना शौर्य सौरभ शुभम जैन सुनाओ ए लोकगीत ला

संगवारी हो, फरमाइशी गीत ला सुने पर आप मन हमन ला ईमेल कर सकत हो। हमार ईमेल पता है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad@gmail.com। और आप मन हमन ला पत्र भी लिख सकत हो। हमार पत्र व्यवहार के पता है कार्यक्रम लोकरंजनी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिन कोड है 4601। पता एक बार फिर से सुना संगवारी, कार्यक्रम लोकरंजनी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिन कोड है 4601। अब कार्यक्रम लोकरंजनी ले डिडनेश्वरीला देवाओ विदा। नमस्कार, जय जोहार और सुनत रहो आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 9 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आइए सुनते हैं रॉय फिल्म का गाना, मीत ब्रदर्स अनजान फिएट और कनिका कपूर की आवाजों में। कुमार के बोल, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम ब्लू।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ए भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ए सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पूरा नाम।

29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद।

0: कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बम्बई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया, जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चिंच पोकली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे, वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले।

0: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
1: क्या नाम है तेरा?
2: मुन्ना।
1: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी, समझा?
0: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
3: कन्हैया यार, तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा, तूने टोक दिया।
2: कहां जा रहे थे?
3: बगदाद
2: है?
3: अबे यार, बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें।
2: वाह वाह, क्या तलवार चलाता है।
3: सेट सेट सडा,
2: क्या जान से मार देता है।
3: हाँ चल, चलता है
2: ना बाबा?
3: अबे चल, मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ
2: 2 रुपए इतने कहाँ से मिले?
3: अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
0: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा।

0: जगदीप ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश ऐसी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींचिए के जाते किधर वहां, और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे बहुत बदमाश है, मगर

0: हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पेड़ पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तुम्हें माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मेरे फिन फिन आई है तो जरा सुधाई कर दी, जटा बहुत मारा बहुत मारा।
1: फिर क्या हुआ?
0: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
1: क्या कहा?
0: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
2: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं। जावेद जाफरी
3: बोल

0: जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते हैं।
1: शाम को कहाँ मिलोगे
2: इसलिए जी,
1: शाम को कहाँ मिलोगे
2: इसलिए जी,
1: दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी, शाम

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का दायित्व डॉ ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम की नियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉ जे पी शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार तिवारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर की नियुक्ति की गई है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया है। राज्य की 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह कवर्धा में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम रायपुर के डूमर तराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रायपुर के बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 338 पदों पर भर्ती की जाएगी और आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष अंकितानंद आज रायपुर में मानसून के दौरान राज्य की औद्योगिक इकाइयों में संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

थोड़ी देर में 10:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11:00 और पुनः 12:00। 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जेल में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत दे

0: मल्लार धुन में गाया था और मैंने बोला कि 1871 में भी इसका परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। पॉप टाइम का वक्त होगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी HIV एड्स के खतरे के प्रति सदैव सावधान रहें। साथ ही होगा घटना चक्र एवं तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे। 6:10 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:10 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 6 बजे। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कृषि में जैविक खादों का प्रयोग। आज की नसीहत में आप सुनेंगे छोटे किसानों को समृद्धि का रास्ता, कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्म गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गैर फिल्म गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

पुनः आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी शाम 6:05 पर प्राप्त कर सकते हैं एवं शाम 5:05 पर भी आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के था साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए अखिलेश कुमार को।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रम सुगम संगीत में अगला गीत सुनिए रक्षा श्रीवास्तव के स्वर में।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: श्रोता साथियों, आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार को, और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

नमस्कार श्रोता साथियों, खुशनुमा दिन है, साथ है आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ का सुरीले गीत संगीत का सफर है, जहां आपके साथ हूं आपकी रेडियो दोस्त डिडनेश्वरी यादव। कार्यक्रम में आप सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता साथियों, कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह द्वारा गाया ये गीत, जो है फिल्म परवरिश से, और इस गीत को लिखा है मजरू ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी हैं कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए। फिल्म सावन भादो से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है। सोनिक ओमी का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नडन स्टेज से फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, लेलन मिश्रा, मिसर मोहल्ला, नरहन बाजार से बीके मिश्रा, गुंजन पराशर, अमित सुमित छोटू और लल्लू पंडित। इसी गीत को सुनना चाहते ताजपुर मुरवा से सदाबहार रेडियो श्रोता संघ, कारी राय, मीनाकारी, पुंजराज, आर्यन, आरती, पुंज, आकर्षण, पिंकी, रिंकी, रिकिनी, तो मोहम्मद फारूक, ललन, न्योली सगरा से जैन कुमार बैरागी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही

0: अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत, जिसे गाया है पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और उनके साथियों ने। आनंद बख्शी ने गीत की शब्द रचना की है, जतिन ललित का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं महामाया चौक मेघापारा से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जतुका किशनपुर से आलम दिल का, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना, आलम चांदनी नाज। गौशाला परा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, इशू और अंशु गुप्ता।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
5: श्रोता साथियों, कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। समीर के बोल है, हिमेश रेशमिया का संगीत है। ये गीत है फिल्म तेरे नाम का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं श्रृंगेशी महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन मधु, हिमांशु अंकित देवांगन, रेडियो श्रोता संघ कोदवा साजा से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, HD गुप्ता, रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं।

वह पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन। और इस गीत की फरमाइश और हमारे पास आई है भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम और सौरभ रावत का। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोता साथियों, आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट करें, shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9601। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9601। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।
1: सुरीली धड़कन, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे ये भजन हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में, सुदर्शन फकीर के बोल और जगजीत सिंह के संगीत के साथ।

0: प्यार का पहला एल्बम से ये लिया गया गीत, जिसे लिखा हस्ती ने, जगजीत सिंह ने गाया और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या।

0: लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा मरासिम एल्बम से। जगजीत सिंह की आवाज़ है, उन्होंने उसे संगीतबद्ध किया है और गुलजार ने बोल लिखे हैं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा जिसे संगीतबद्ध किया है उत्तम सिंह ने, गाया है जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम ने, फिल्म पिंजर से जिसे लिया गया है। आइए सुनते हैं साथियों की आवाज़ के साथ में ये नगमा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जो कि है द खजाना कॉन्सर्ट से। तलत अजीज़ की आवाज़ है और तलत अजीज़ के संगीत से सजा हुआ था। और हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे एक और नगमा जिसे पंकज उदास ने गाया था और पंकज उदास की ही संगीत से सजा हुआ है। आइए सुनते हैं ये नगमा खुशबू बनकर द खजाना कॉन्सर्ट से।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 11 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया है। राज्य की 11 जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता

0: जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी, जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को B1 खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने को कहा। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई की है। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने बताया कि प्रत्याशी और उनके पिता का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। ये विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को आज दोपहर रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेक लोक कलाकार गीत, पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह कवर्धा में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री आज शाम रायपुर के डुमरतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 11 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को B1 खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
3: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी

0: मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।
3: सच्चे मन के सच्चे

दो कलियां फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का है संगीत। आज जन्मदिवस है अभिनेत्री नीतू सिंह का, तो चलिए सुनते हैं आज यादों की महफिल में उनके ही द्वारा, अभिनय के द्वारा सजाए गए गीतों को।

0: हम सुन रहे थे याराना फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत रफू चक्कर फिल्म से कंचन शैलेंद्र सिंह की आवाजें गुलशन बावरा के हैं बोल और कल्याण जानन जी का है संगीत

0: हम सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में वर्मा मलिक के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत राजमहल फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, वर्मा मलिक और तुलसी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से. सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ. और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है. किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी ज़रूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए

कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील, पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नजर आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताज़ा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है, इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज़ जीते हैं। खुशियाँ हमारे भीतर ही मौजूद हैं, और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की ज़रूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख।

डाकिया डाक लाया। और ये डाकिया हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात देखिए ना कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और यह गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, ख़त्म ही हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नज़र आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती हैं कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद हैं, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया, उसके साथ पलकों की छाँव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छाँव में, फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग, जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहाँ से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया, जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो ज़रूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है, बहुत सारी बातें इसमें हुई थी। लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता था, गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिल एक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठ कर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गांव में और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं, इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गाँव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशीय मिला, उसे संभाल कर रखे हैं, इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोज़ी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत हैं और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है। क्या

बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे हैं और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था। कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिल उठने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी मैं भी बड़े सलीके से सहेजे हैं। कभी सफ़ेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुनों की महफिल सजाते गायक गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बरची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछें तो आप गलत कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि बावर्ची फिल्म से है, और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आसमी, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने। बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं, और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है। जी हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज़ होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बावर्ची का रोल निभाया, एक संयुक्त परिवार के मन मुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेरणा देने वाला किरदार है, बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्ना डे की आवाज़ है, बावर्ची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है, ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता, है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है और वह बदल गया। जी बिल्कुल, बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुँचने लगे हैं, ये भी तो एक अच्छी बात है ना हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के

तारों के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में टारजन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टारजन होना चाहते थे, बढ़िया बात है। वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है। हाँ, ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हम सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, परंतु हम आप तक अगला गीत ज़रूर पहुँचा सकते हैं। और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे, इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में दो डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, ज़रूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहाँ पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया, और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में 1, 2, 3, 4, 5 या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हों, वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसे कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए एक ही प्रश्न।

मैं दे रही हूँ इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद हैं, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद हैं जहाँ पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा ज़रूर।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ही याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मज़ेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूसरा राम, तीसरा राम का अभिनेता आई एस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानू नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता

इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी माँ पिता बहन सारे रोल उन्होंने ही किए थे जी। जुड़वा बेटों की तेरी भूमिका कई सारे निभाए हैं, अमिताभ बच्चन ने इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राणा रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है इसके बारे में, आंटी नंबर वन के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमीन पर की बात करें तो वहाँ पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में और क्या बढ़िया किरदार निभाती हैं। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस। वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं जी। बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीज़ें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की और फिल्म जॉली एलएलबी में अरशद वाशी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना फलसी ककर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सब से मिलती हैं, ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। वो किरदार गायक अभिनेता कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज़ में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं। यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारों जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हैं गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत, सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप ज़रूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, ज़रूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा खोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सा गीत है, ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए। पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती हैं, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी हर माँ ने कितना प्यार दिया है और आप सब ने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है और उन माँओं में से आप सब ने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन हैं।

के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्म समीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपनाकर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति

अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्म मंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आंकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

अब सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांभानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र

0: स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी

0: मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमरीका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल।

0: में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर रहा। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2-दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के पोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हम है ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
2: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है, लेकिन एक बूंद भी

0: ही गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं, ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
1: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही।
0: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
0: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
1: बिल्कुल, और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया, उसके बारे में।
0: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती है ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
0: अच्छा।
1: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो गाना बड़ा अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
0: क्या बात,
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: ये जो, और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
0: बिल्कुल
1: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उद्घोषक जो खास तौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारी श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई है ना? तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
1: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है, इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
1: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
0: क्या बात, क्या है? बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियों और सखा तो

0: कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना?
1: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीज़ें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नज़रिया है वो भी ख़राब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए।

0: चल भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, ना कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाती, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए,

0: ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे, और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं। ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना, और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बना देती हैं। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना, यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार-बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं 18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था और लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता

0: चला गया।
1: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया, ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है, तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं, ताकि गर्मी जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
1: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना, उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
1: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है। तो जैसे और जो चीजें ना बांधनी के डाले जाते हैं, तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में। साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है, ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी, बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम, और ये बहुत हवादार होता है, जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मी में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं, जिसे खट अभी आपने बताया, खट कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
1: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना, वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना बहुत
0: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
1: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
1: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
0: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
1: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और साड़ी इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस

0: कहते हैं, इसका सरल हृदय अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी, या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
0: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा,
1: क्या होगा, और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो। सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा, तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं, भाई आपका ये काम मैं कर दूंगा कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को डांढस बधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाएं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना,
0: सही
1: कथनी और करनी में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देख बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल को धोकर एक घंटा भिगोएं, पानी को निथार कर चावल, दो चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपके साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं, उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल।
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय

0: बस पर्ची लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत हाँ, देर से हाँ। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन और बानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारे प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारे प्रसाद द्विवेदी की भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी,
0: हजारे प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके, और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नज़र आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था। उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूँ, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ। ना मैं वहाँ जाता, ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहाँ से यात्रा और कहाँ से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा

0: में कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है और वो मुझे वहीं जा करके मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
0: जी, जी।
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है, गिरा अनयन नयन बिन उबानी। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन उबानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ, वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन उबानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन उबानी नहीं है, नयन और उबानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज़ को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिन उबानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर कितनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज़ उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अय्याराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूँगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: क्या इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
1: जी।
2: है। एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं जाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं, वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी।
2: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
2: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था

0: था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था, तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आजादित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया
1: जी।
0: और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज़्यादा प्रिय है या ललित मत
1: जी। तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं, तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी, जी,
1: ये हम समझ सकते
0: जी,
1: हैं जी। तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे ये गीत बहुत पसंद है, मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला
1: कहीं कभी भी, क्या बात
0: जी,
1: है। फिल्म पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी,
1: कर
0: जी,
1: पाएंगे
0: जी, जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा। तुम

0: पुष्प मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी, जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई, पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है, तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई, आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फ़ोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी, कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की, क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
0: जी।
1: तो विशेषांक निकला 120 पेज का, तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है
0: जी।
1: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
0: जी जी जी।
1: तो वो

0: गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
1: जी बिल्कुल,
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसकी
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी,
1: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं, और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी।
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं, और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है
1: बिल्कुल। तो रायडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन सुनाए, तेरे बिना चलिया रे, इसको सुनना चाहिए।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: असल में

0: मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज़्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष
1: जी,
0: में
1: जी।
0: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है, और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
1: जी।
0: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने ज़माने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
1: बिल्कुल,
0: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल। प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
0: जी।
1: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
0: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे। उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकार की भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
1: जी।
0: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
1: जी,
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
1: अच्छा।
0: उनकी पुत्र वधु ने लिखा। उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान हो करके अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
0: जी। मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी,
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरे
0: गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद है
1: बहुत सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन
0: जी।

0: रायडी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है, वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं, वो आँखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूँ और पक्षधर हूँ कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं, ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज़ है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी, ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियाँ नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय, उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और

0: सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियाँ लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियाँ वाकई नायिकाएँ हैं, वो योद्धा हैं। और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है।
1: जी।
0: जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं हैं। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: जी, बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ।
1: जी,
0: मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी मंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ।
1: जी,
0: मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी ज़बरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गज़लें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गज़लों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गज़ल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य या कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीज़ें आएँ। तो सोचता ये हूँ कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको

0: अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
1: क्या बात है,
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडीह, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, जिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडीह, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये साजापानी, गट्टीबुड़ा, करडेगा, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, तीता पाकेर, सोनाजोरी, घंताडांड, परसाडांड, पेटा, बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारूमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछा, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागरपाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये कटकोना, जिलगा, गीत कुंवारी, लबेद, बोतली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा, एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुंडकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंस

0: गढ़ी बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये फुरफुंदी, झालपानी, औराई, बरबसपुर, मुरुमडी, छताल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझर, डडईपानी, बुडार, जिडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:05 में लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का समय होगा संध्या 5:30। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा HIV एड्स के खतरे के प्रति सदैव सावधान रहें। साथ ही सुनेगा क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00 और 6:10 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर। इसके अलावा आप सुनेंगे शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। रात्रि 10:00 भी आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण किया जाएगा रायपुर केंद्र से 6:45 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कृषि में जैविक खादों का प्रयोग। सुनेगा नसीहत छोटे किसानों को समृद्धि का रास्ता कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा रात्रि 9:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता का वक्त होगा 10:30। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:00 और दोपहर 12:30 DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन।

0: की दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। कार्यक्रम पॉप टाइम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं यूफोरिया ग्रुप के गाए हुए इस पॉप गीत को। रचना है पलाश और दीक्षांत की।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
6: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए हुए इस गीत को। रचना है देव कोहली की, संगीत है बिद्दू का।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर की शब्द रचना को विवाह ग्रुप के स्वर में।

पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी के गाए हुए इस पॉप गीत को। रचना है इरफान सिद्दीकी की।

अदनान सामी के गाए हुए इस पॉप गीत के साथ ही कार्यक्रम पॉप टाइम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ईशा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी लापरवाही किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? ऐसी गलती जिसका असर सिर्फ कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि पूरी उम्र तक साथ रह सकता है। दुनिया में लाखों लोग आज भी एक ऐसी बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं जिसके बारे में जानकारी की कमी और गलत धारणाएं सबसे बड़ी समस्या है। कई लोग डर के कारण सच जानने से बचते हैं तो कुछ शर्म की वजह से समय पर जांच तक नहीं करवाते। परिणाम यह होता है कि बीमारी से ज्यादा नुकसान अज्ञानता और लापरवाही पहुंचा देती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसकी हर युवा, हर परिवार और हर जिम्मेदार नागरिक को सही जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एड्स की, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की। यह बीमारी एचआईवी नाम के वायरस के कारण होती है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। आज के समय में सही इलाज और समय पर जांच की मदद से एचआईवी के साथ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीना संभव है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, क्योंकि सही जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आज भी समाज में एड्स को लेकर कई तरह की गलतफहमियां और डर मौजूद है। कई लोग इसके बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं, इसलिए हमें सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर इसका समय पर इलाज ना कराया जाए तो शरीर कई गंभीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि एचआईवी फैलता कैसे है? एचआईवी मुख्य रूप से चार तरीकों से फैल सकता है। पहला, असुरक्षित संबंध बनाने से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई या सीरीज का इस्तेमाल करने से, या एचआईवी संक्रमित माँ से गर्भावस्था के दौरान बच्चे में संक्रमण हो सकता है। इसलिए इस सभी परिस्थितियों में विशेष सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि एचआईवी किन तरीकों से फैलता है। यह हाथ मिलाने, गले मिलने, साथ बैठने, साथ खाना खाने, एक ही शौचालय का उपयोग करने, मच्छर के काटने, छींकने या खांसने से नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करें। एड्स से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। यदि कभी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि रक्त की एचआईवी जांच की जा चुकी हो। यदि

किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे संक्रमण का खतरा हो सकता है तो बिना देर किए एचआईवी की जांच करानी चाहिए। आज चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नामक दवाओं की मदद से एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं। समय पर जांच और नियमित इलाज से संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सकता है और दूसरों तक फैलने का जोखिम भी काफ़ी कम किया जा सकता है। समाज में एचआईवी के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। एचआईवी संक्रमित लोगों के साथ सम्मान और संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। वे भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें प्यार, सहयोग तथा सम्मान का अधिकार है। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय स्वास्थ्य श्रोताओं तथा डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। सही जानकारी ही हमें सुरक्षित रख सकती है। यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण का संदेह हो तो उसे डरने या शर्म महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू किया जा सकेगा। सरकारी कई निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर एचआईवी की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा सहयोग और सकारात्मक व्यवहार समाज को अधिक सुरक्षित और जागरूक बना सकता है। इसलिए सही जानकारी अपनाना और अफवाहों से बचते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की बात में बस इतना ही। दोस्तों, आज महीने का दूसरा बुधवार और आज बारी रहती है क्रम घटना चक्र की।

दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के क्रम घटनाचक्र में, जिसमें हम जानेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरीय कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेंडिबुगियो वायरस के लिए पहले आणविक डायग्नोस्टिक टेस्ट को अपनी एमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल किया। हाल ही में जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा 2 अंतरिक्षयान ने टेरोफ्यून नामक क्षुद्र ग्रह के बेहद निकट से सफल हाई स्पीड फ्लाई बाई किया। यह तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाल ही में चीन ने दक्षिण प्रशांत महासागर में अपने परमाणु संचालित पनडुब्बी से एक लंबी दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया था और इसे स्थानीय समय अनुसार प्रक्षेपित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते उपयोग और उससे जुड़े वैश्विक अवसरों एवं चुनौतियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने AI गवर्नेंस पर अपने पहले सार्वभौमिक वैश्विक संवाद का आयोजन किया। थाईलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित फैताचाबुरी प्रांत के डॉनयाई थोंग पुरातात्विक स्थल से लगभग 2000 वर्ष पुराने दो भारतीय स्वर्ण छल्लों की महत्वपूर्ण खोज हुई। इस खोज ने प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक तथा समुद्री संपर्कों के इतिहास को नई मजबूती प्रदान की। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की 3 प्रमुख पुलिस एवं आंतरिक सुरक्षा संस्थाओं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति को मंजूरी दी। हाल ही में भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में INS महेंद्र गिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल करने जा रही है।

यह स्वदेशी स्टील फ्रिगेट भारत की समुद्री सुरक्षा, आधुनिक युद्ध क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दे दी गई। यह नीति वर्ष 2021 की डेटा सेंटर नीति का स्थान लेगी। नई नीति का उद्देश्य राज्य को देश के प्रमुख डिजिटल और एआई आधारित डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना के हजारों सैनिकों के योगदान को लंबे समय बाद आधिकारिक मान्यता मिली। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने 9,909 ऐसे भारतीय सैनिकों के नाम अपने अभिलेखों में शामिल किए जिन्हें पहले आधिकारिक रूप से स्मरण नहीं किया गया था। हाल ही में उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी गई। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में एक सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की योजना की घोषणा की। हाल ही में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के स्थैतिक टेस्ट फैसिलिटी में साल्वे के ठोस रॉकेट मोटर का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट किया। यह परीक्षण भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए प्रयोगशाला में विकसित प्लेसेटो ऑन चिप तकनीक तैयार की। मुंबई स्थित शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक माइक्रोफ्लूलिक प्लेटफॉर्म मानव प्लेसेटा के प्रमुख कार्यों की प्रयोगशाला में नकल करने में सक्षम है। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ इन्सबुर्ग के वैज्ञानिकों ने पदार्थ का एक नया और दुर्लभ क्वांटम रूप फ्रैक्शनल फर्मी सी सफलतापूर्वक तैयार किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1 जुलाई से आधार धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा शुरू की। अब निवासी आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना ईमेल आईडी जोड़ या अपडेट कर सकते हैं। इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आधार नामांकन या अपडेट केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, क्रम घटना चक्र में बस इतना ही।

दोस्तों, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम तरुणों की पसंद की ओर। दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद में हमें पहला खत भेजा है धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव ने। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक यादव, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव ने। लीजिए सुनिए दोस्तों उदित नारायण और शंकर महादेवन, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में फिल्म दिल लगी का यह गीत। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत है शंकर एहसान लॉय।

दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद में हमें अगला मेल किया है मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, बिहारी पटेल, लक्ष्मी बरेट, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई ने। ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी देवांगन, प्रकाश देवांगन ने, गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन ने। लीजिए सुनिए दोस्तों आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये गीत। गीत के बोल और संगीत है रविंद्र जैन का।

दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद में हमें अगला खत भेजा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। लीजिए सुनिए दोस्तों कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म फूल और कांटे।

तो दोस्तों आज के क्रम में बस इतना ही, मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात यूवाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के रखिए अपना ख्याल और सुनते रहे आकाशवाणी रायगढ़। शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी FM बैंड पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज
3: आकाश। हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नज़र डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिंतन भक्ति संगीत का कार्यक्रम। वंदना का समय होगा 6:10। कृषि चर्चा 6:30 पर। 6:40 पर सुनिएगा रामचरित मानस। देशगान का प्रसारण वक्त होगा 6:50। एक ही फिल्म से इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म जान के नगमे। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादर 7:45 पर सुनिएगा। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी आप सुनेंगे 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुबह 9:00, 11:00 और 12:00 और दोपहर में 2:15 पर। प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करेंगे रायपुर केंद्र से सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश 10:30 पर। लोक संगीत 10:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दीदी के गोट दोपहर 2:00। कल शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम शाम में गज़ल का वक्त होगा संध्या 5:10। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार 5:30 पर। हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण शाम 6:00 6:10 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। संध्या 7:20 पर सुनेगा कृषक भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। सुनेगा नसीहत समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं और मृदा की सेहत सुधारें। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनिएगा रात्रि 9:00। विविध संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
4: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
8: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
9: ये आकाशवाणी रायपुर है।
2: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र।

0: दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हां आज अल निनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजन बाई के नाव ऊपर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल दे जाही राज्य सम्मान। गनियारी गांव ला कला ग्राम के रूप में बनाया जाही। और महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माई लोगिन मन के ई केवाईसी के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गए। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हां आज अल निनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। पत्रकार मन ले गोट बात मौमन कहीन कि केंद्र सरकार है इसो अप्रैल में ही अल निनो के चुनौती ले निपटे की तैयारी शुरू कर दे है। ओमन बतैन कि अल निनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारी मन के माध्यम ले बुआई फसल और बाजार के स्थिति ऊपर सरलक देखरेख करे जाते। ओमन कहीन कि मानसून में देरी के स्थिति तुअर सोयाबीन कपास और आने फसल मन के बुआई प्रभावित हो है। प्रदेश के कतको निगम मंडल बोर्ड समिति और आने संस्था मन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य मन के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केस शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद में गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति करे गए है। तो उन्हें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ममता साहूला बनाए गए है। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद में वेदराम मनहरे की नियुक्ति करे गए है। संगे संग छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आनंद निषादल बनाए गए है। उन्हें छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष के पद में राजेश कुमार राजपूत के नियुक्ति करे गए है। तथा साकंबरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ल बनाए गए है। इसने छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम ल बनाए गए है। जारी आदेश के मुताबिक रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद में डॉक्टर जेपी शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद में आनंद कुमार तिवारी और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मंगलदास ठाकुर ल बनाए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा बने अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य मन ल बधाई और शुभकामना दे हवें। राज्य शासन हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 जिन अधिकारी मन के प्रभार में फेरबदल करे है। एकर अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारी मन के तबादला आदेश जारी कर दे गए है। उन्हें राज्य के 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन ल घलो बदले गए है। प्रतीक जैन ल जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाटाला जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गवला जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तो उन्हें तन्मय खन्ना ला जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी ला जिला पंचायत राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए गए है। इकर अलावा गोकुल राम रावटे ला जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी ला जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता ला जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी ला जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयम ला जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास ला जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाए गए है। संगे संग सुरुचि सिंह ल नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त नियुक्त करे गए है। तो उन्हें विजेंद्र सिंह ल नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम ल नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा ल नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कामकाज के समीक्षा करें। ओमन राजस्व मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और लोगन मन ल बढ़िया सेवा दे के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री है किसान मन के B1A खसरा ऋण पुस्तिका और भूइया ले जुड़े जानबा व्हाट्सएप के माध्यम ले दे जाए के व्यवस्था करे बर कहिन। ओमन लंबित राजस्व प्रकरण मन के जल्दी निपटारा, राजस्व अभिलेख के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवा मन के विस्तार ऊपर जोर दिन। पद्म विभूषण ले सम्मानित जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजन बाई ला आज रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच में संगीतमय श्रद्धांजलि देगी। ये मौका में संस्कृति मंत्री राजेंद्र अग्रवाल है डॉक्टर तिजन बाई के नाव ऊपर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल राज्य सम्मान दे जाए के घोषणा करीन। ओमन कहिन कि उखर गृहग्राम गनियारी ल कला ग्राम के रूप में बनाया जाही। संगे संग तिजन बाई के तंबूरा ल रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में देखाए बर रखे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,

0: ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़ो बांचे समाचार को थी। महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माई लोगिन मन के EKYC के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गए है। बस्तर जिला के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज सिन्हा हा बताइन कि जिला में करीबन 90% हितग्राही मन माई लोगिन मन केवल EKYC करवा ले है। ओमन छूटे हितग्राही महिला मन ले तय करेगे बेरा तक EKYC कराए के अपील करे हवे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के जम्मो पात्र परिवार मन ला घर देवाए बर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले जरूरी पहल करे के विनती करे हैं। ओमन बताइन कि आवास प्लस 2.0 के सूची और ग्राम सभा के दौरान जौन पात्र हितग्राही मन के नाव शामिल नहीं हो पाए है ओखरो मन के समस्या के समाधान पर जरूरी निर्णय लेके विनती करें। ऐसो दिसंबर में हो या नगरीय निकाय के आम और उपचुनाव की तैयारी के समीक्षा पर आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले बैठक लेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह सचिव स्तरीय बैठक में अधिकारी मल्ला बेरा में पूरा काम करे के निर्देश दिन। जानबा के मुताबिक प्रदेश के 15 नगरीय निकाय जिमा 4 नगर पालिक निगम 5 नगर पालिका परिषद के संगे संग 6 नगर पंचायत शामिल है। एकर कार्यकाल एसो दिसंबर में खत्म हो गया है और संगे संग 2 नवा बने नगर पंचायत में घलो आम निर्वाचन की तैयारी करे जाते। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के गतिविधि ल और ज्यादा प्रभावी बनाए बर उच्च शिक्षा विभाग 29 जिन अंशकालिक जिला संगठक मन के नियुक्ति करे है। ये संगठक मन ल 2 साल भर उपराह जिम्मेवारी दे गए है। उन्हें कलेक्टर मन के समन्वय ले जिला स्तरीय सलाहकार समिति बना के NSS के कामकाज के सरल निगरानी करे के निर्देश दे गए है। रायपुर के तीर उर्लामा 1 फैक्ट्री में काली संझा होए हादसा में 3 मजूर मन के मौत हो गए है। जानबा के मुताबिक ये घटना ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के स्थिति हुई। विस्फोट के बाद 2 मजूर के मौकच में मौत हो गए और 1 मजूर के अस्पताल ले जात खानी मौत हो गए। 2 मजूर मन मध्य प्रदेश के रहिया रहे तो उन्हें 1 मजूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के रहिया रहे। ये फैक्ट्री में पिग आयरन के रिफाइनिंग के काम होते। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। यही बीच औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निर्देश पर कारखाना प्रबंधन मृतक श्रमिक मन के परिवार वाले मन ल 30-30 लाख रुपया के आर्थिक सहायता दे ऊपर मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इंडोनेशिया में PT क्राकाओ टाउ स्टील परसेरो TBK के संग समझौता ज्ञापन ऊपर दस्तखत करे के घोषणा करे है। इस समझौता के तहत स्टेनलेस स्टील स्लैब के उत्पादन पर 1 संयुक्त उद्यम बनाए के संभावना खोजे जाही। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार पंडा कहिन कि ये साझेदारी पारंपरिक सीमा ले परे और अवैया बेरा बर क्षमता निर्माण करे के प्रति सेल के प्रतिबद्धता ला दर्शाते। अफ्रीका में 4-12 जुलाई तक चलत एशियन पैसिफिक और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के जयदीप साहू स्वर्ण पदक जीते हैं। जयदीप 66 किलोग्राम सीनियर वर्ग में बढ़िया प्रदर्शन करत 452 किलो ले ज्यादा के वजन उठाइन। जानबा के मुताबिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 2 आने खिलाड़ी प्रियंक मिश्रा और अमान शुक्ला घलो भाग लेवत हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अलनीनो के संभावित प्रभाव के समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक लीन। जाने माने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तिजनबाई के नाव पर पंडवानी कला के क्षेत्र में हर साल दे जाही राज्य सम्मान। गनियारी गांव ला कला ग्राम के रूप में बनाया जाही और महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही माइलोगिन मन के EKYC के पंजीयन के तारीख ल 30 अगस्त तक बढ़ा दे गई है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।

हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए पहले हवा।

0: भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में हसरत जयपुरी की शब्द रचना को। इसे संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम आरजू।

0: सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीली जी हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म आराधना का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के अंत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत के स्वर में समीर के लिखे हुए गीत को। संगीत है आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम अंजाम।

अभिजीत के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से।

0: बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और पेश आज के मुख्य समाचार। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मान दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने ई केवाईसी करवा लिया है। उन्होंने छूटे हुए हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है।
1: महतारी बंधन योजना का जो ई केवाईसी का प्रोग्राम चल रहा था 30 जून तक उसका लास्ट डेट था, तो उसमें कुछ लोग छूट गए थे। तो हमारा भी यहाँ 91% तो हो ही गया था, लेकिन अभी जो छूटे हुए लोग हैं उसके लिए 30 अगस्त तक का डेट बढ़ा दिया गया है ताकि उनका ई केवाईसी 100% पूर्ण हो सके। ये सभी जिलों के लिए पूरे छत्तीसगढ़।
0: प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरीशंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का दायित्व डॉ ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग का अध्यक्ष सुधीर गौतम को बनाया गया है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। वहीं राज्य के 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहलामानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़,

0: विनय कुमार पोयम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त नियुक्त किया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को आज रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीत में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने डॉ. तीजन बाई के नाम पर पंडवानी कला क्षेत्र में हर वर्ष राज्य सम्मान दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही तीजनबाई के तंबूरे को रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में प्रदर्शन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। श्री शर्मा ने बताया कि 24 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की सूची ग्राम सभाओं को प्रस्तुत की गई, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान पलायन और अन्य कारणों से कुछ पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सके। इस कारण पात्रता सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया जा सका है। इसके अलावा तकनीकी कारणों से कुछ पात्र परिवारों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृति से वंचित रह गए हैं। श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी पहल करने का आग्रह किया है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सके। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों, जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल हैं, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव आर संगीता ने नगरीय निकायों के परिसीमन और आरक्षण की प्रगति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने इंडोनेशिया में पीटी क्राकाटाउ स्टील पर सेरो टीबीके के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस समझौते के तहत स्टेनलेस स्टील स्लैब के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी। यह समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते औद्योगिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 29 अंशकालीन जिला संगठकों की नियुक्ति की है। इन संगठकों को 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कलेक्टरों के समन्वय से जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन कर एनएसएस की गतिविधियों की नियमित निगरानी और प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्यप्रदेश के हैं, जबकि एक मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के निर्देश पर कारखाना प्रबंधन ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने पर सहमति प्रदान की है। अफ्रीका में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित हो रहे एशियन पैसिफिक और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने स्वर्ण पदक जीता है। जयदीप ने 66 किलोग्राम सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 452 किलो से अधिक

का वजन उठाया। जयदीप के इस प्रदर्शन पर भारतीय टीम के कोच और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर कृष्ण साहू ने खुशी जताई है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के दो अन्य खिलाड़ी प्रियंक मिश्रा और अमान शुक्ला भी हिस्सा ले रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। आज प्रदेश में दिनभर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा की गतिविधि में कल कुछ वृद्धि होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, हालांकि कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर अगले 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कुम्हारी थाने में पदस्थ आरक्षक सोलोमन राजू को निलंबित कर दिया है। और रायपुर विकास प्राधिकरण ने पहले चरण में कमल विहार और राव भाटा सहित लगभग 121 आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सम्मान दिया जाएगा। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि उनके गृहग्राम गनियारी को कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। और अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 7 बजने को हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत, रोटी कपड़ा और मकान। आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और कुमार सानू के युगल स्वर में मदन पाल के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम सलामी।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है संभावना।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंत में लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक के स्वर में समीर के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम साजन।

अलका याग्निक के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषक भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लयिका सियान जवान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो, बड़ दिन बाद भेटा पड़े हन कहा। आप मन कैसे हवा संगवारी हो? बढ़िया हो? बढ़िया रिह मस्त। और देखा संगवारी हो, बरसात तो शुरू हो गए कहा। तो ऐसने में हमार किसान संगी संगवारी मन के बूता काम भी गजा किसने कहा। कौन कोती तो बुआई कर दारी ना, कौन कोती अभी चिकला मतात हैं है ना, और रोपाई के काम करत हैं कौन कोती। और देखा अभी बहुत सारा काम हवे हमार किसान संगी संगवारी मन के। कतकोस किसान संगी संगवारी मन अभी कोचाई हरदी ये सब बोला मतलब जगात हैं कहा। मूंग है, मूंगफली है, मिर्चा तो कतका संगवारी मन जगा दारी ना भी कहा। और अभी बढ़िया पानी गिरे है तो बढ़िया अभी बता रही है कहा हमार बूता काम के करे के। तो हमार संगवारी मन के तो बूता काम चलते रहते कहा। और देखा संगवारी हो, हमन खेती किसानी के बूता काम तो करथन, लेकिन ये ध्यान नहीं रखन कि खेत खार में कतका खाद उर्वरक डालना है और कौन समय में डालना है। हमन फसल के उपज ला बढ़ाए बर अंधाधुन रासायनिक खाद और उर्वरक ला डालथन। तो संगवारी हो, एकल ले तो पैदावार तो बढ़ते कहा, लेकिन एकर से बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचते। मतलब कुछ समय के लिए तो पैदावार बढ़ते, लेकिन ओकर बाद जो हमार माटी के उपजाऊ शक्ति है वो हर धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाते कहा। तो संगी हो, खेत खार में रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, एकर जगह हमला जैविक खाद यानी कि गोबर खाद, केचुआ खाद, ये सबों के प्रयोग करना है। ये सबों के प्रयोग करना आज के समय में हमार भुइयां और फसल दोनों पर बहुत ही जरूरी हो गए है संगवारी हो। रासायनिक खाद है कुछ समय पर तो उपज ला बढ़ाते, ओकर बाद जो हमार खेत के माटी के जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरा शक्ति है, वो ला कम कर देते। तो संगी हो, आवा जानबो कि रासायनिक खाद के जगह हमन जैविक खाद के प्रयोग का बर करबो और कैसे करबो तेला। तो सबले पहली तो हमला गोबर के बढ़िया पके हुए खाद जैसे पहले हमार पुरखौती में यानी कि हमार दादा बोबा मन बहुत ज़्यादा मतलब पशुपालन के काम ला करत रहिन। पहले खेती किसानी के काम हर नांगर बैला वो सब ले होए कहा, लेकिन अब तो कतका किसान संगी संगवारी मन पशु राखे बर बंद कर दिन है, गाय गरु भी नहीं राखत हैं। तो ऐसने में गोबर भी मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन संगवारी हो, हमला जैविक खाद के प्रयोग करना है, गोबर के बढ़िया पके हुए खाद ला डालना है। जैसे पहली गड्ढा डाल के ओमें सब गोबर ला फेंके, ओकर बाद वो हर पक जाए, ओकर बाद वो ला खेत में डालें कहा। तो एकर प्रयोग हम कैसे करबो? तो खेत के जोताई के समय फसल बोए के 15-20 दिन पहली एक एकड़ में कम से कम 4-5 ट्रैक्टर सड़े हुए गोबर के खाद ला बढ़िया से हमला मिला देना चाहिए। और यही काम संगवारी हो, हमार पहली पुरखौती में होत रहीस कहा। हमार दादा बोमा मन करत रहिन कि सुबह सुबह उठ जाए ओमन के संग में हम उन उठ जान। और पहली गाड़ी रही से गोलर गाड़ी, ओ में जो खाद है गोबर के खाद है ओला सुबह सुबह जोरें, ओकर बाद खेत में डाले भर जाएं। तो ऐसने ही कामला बुआई के 15-20 दिन पहले ये कामला हमला कर लेना है। एकर से का फायदा होते संगवारी हो? एकर से जो माटी में नमी यानी कि पानी सोखे के जो क्षमता है वह बने रहते, और भुइयां हर भुरभुरा हो जाते यानी कि बढ़िया गुड़गुड़ा हो जाते। तो एकर से हमार जो फसल है वह अच्छा होते, ओकरे से ती हमला गोबर के बढ़िया पके हुए खाद ला ही डालना चाहिए। ओकर बाद संगवारी हो, केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट ला हमला डालना है। एकर कैसे प्रयोग करबो? तो धान है, चना या फिर कोनो भी फसल के बुआई के समय ओला लाइन में कतार में 2-3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से एला डालना चाहिए। और ये जो केचुआ खाद है संगवारी हो, एकर प्रयोग तो साग भाजी में बहुत ही अच्छा माना जाते, बढ़िया माना जाते। एकर फायदा के बात करबो तो

एमा फसल बर जरूरी जम्मो पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सब्बो हर मिलते। एकर से पौधा मन ह बढ़िया बढ़ते संगवारी हो। तो एकरे सेती हमन ला जैविक खाद के प्रयोग करना है और संगे संग हरी खाद जेन मा हमन जोन ला हमन सनई और ढेंचा के नाम से भी जानथन कहा। तो देखा संगवारी हो, पानी गिरे के दिन मा यानी कि जून जुलाई में पानी गिरते कहा, तो ओ में ओ दिन में का करना है, खेत मा सनई और ढेंचा ला बो देना है। जब वो हर 40 ले 50 दिन के हो जाही और ओ मा फूल आए वा लगही, तब ओला नांगर या फिर हल या फिर रोटावेटर ओला चला के खेत में ओला माटी मा दबा देना है कहा। तो माटी में दब जही तो है सड़ के का होही, खाद बन जही संगवारी हो। एकर से का फायदा होते, तो यह खेत मा नाइट्रोजन के जो मात्रा है ओला प्राकृतिक रूप से बढ़ा देते, जेकर से यूरिया डाले के जरूरत नहीं पड़े, यानी कि हमारे लागत में कमी आते संगवारी हो। हमला यूरिया खरीदे के जो लागत है वह कम हो जाते। और संगे संग संगवारी हो, जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के हमला प्रयोग करना है। बीज मल्ला बोए के पहली राइजोबियम एजोटोबैक्टर या फिर पीएसबी कल्चर ले उपचारित करके करना चाहिए। एक किलो बीज पर 20 ले 25 ग्राम कल्चर है काफ़ी होते संगवारी हो। एक फायदा के बात करबो तो एहर सूक्ष्म जीव मन हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है ओला खींच के और माटी में जमे फास्फोरस ला घोल के पौधा ला देते संगवारी हो। और देखो जैविक खाद डाले के जो फायदा है एकर बात करबो तो हमर जो भुइया के सेहत है वो और बढ़िया बने रहते, ओकर सेहत में सुधार होते, माटी के जो उपजाऊपन है वो हर बने रहते, भुइया हर कड़ा नहीं होए संगवारी हो। तो ओकरे सेती हमला रासायनिक उर्वरक के स्थान में जैविक खाद मन के प्रयोग करना है। एकर से और का फायदा होते, हमर जो खर्चा है वह कम हो जाते, यानी कि रासायनिक खाद खरीदे के जो भारी खर्चा है वह बच जाते और किसान भाई मन आत्मनिर्भर बन जाते। और जैविक खाद डाले के एक ठन और फायदा है कि जोन फसल में हमन जैविक खाद डाले हन ओकर जो फसल है ओकर स्वाद बढ़िया होते और यह सेहत भर भी अच्छा होते। जैविक खाद ले उगे अनाज और साग भाजी के जो स्वाद है वह बहुत बढ़िया रहते, यानी कि अच्छा लगते। आप मन जान दरिए कि जो स्वाद ला देख के जान दरिए कि यह रासायनिक उर्वरक के कि यह जैविक उर्वरक के है ना, जैविक खाद या उर्वरक के आप मन एकर स्वाद ला देख के पहचान दरिए। तो एला खाए से संगवारी हो बीमारी के डर भी नहीं रहे। अभी देखा रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करत हैं हमारे किसान संगवारी मन तो बहुत ज़्यादा बीमारी होते, नाना प्रकार के अलग अलग बीमारी होते संगवारी हो। पहली जमाना में ये सब रासायनिक खाद मन के उर्वरक मन के उपयोग बहुत नहीं होत रहीस, तो वो खानी बीमारी भी नहीं होत रही संगवारी हो। ओकरे सेती हमला धीरे धीरे जैविक खाद के प्रयोग हमला करना है। और एकर से एक ठन और फायदा होते, मित्र जो कीड़ा है ओमन के सुरक्षा होते। खेत में केचुआ और कतकोन मित्र कीड़ा मन जियत रहते जो रासायनिक दवाई डाले ले ओमन मर जाते, यानी कि हमला रासायनिक जो खाद है उर्वरक है ओकर उपयोग हमला बहुत ही कम करना है संगवारी हो। ओकर जगह में ये जैविक खाद के उपयोग करना है। अब एक ठन बात संगवारी हो, रासायनिक खाद ला हमला एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। पहली साल आधा रासायनिक और आधा जैविक कराओ, फिर धीरे धीरे रासायनिक ला कम करते हुए पूरा जैविक में आ जाना चाहिए। एकर से उपज में भी फर्क नहीं पड़े संगवारी हो, और एकदम से हमारा रासायनिक खाद ला बंद कर देबो तो हमार उपज में भी फर्क पड़ जाही। तो ये तो रही संगवारी हो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कृषि में जैविक खादों का प्रयोग। अब बेरा हो गिस ना संगवारी हो आज के मौसम को ती जाए के, तो आज के अधिकतम तापमान रही से 31 अंश सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रही से 25 अंश सेंटीग्रेड और आर्द्रता बिहनिया 7 बजिया रही से 86% 86%।

0: आए के, लेकिन ओकर पहली हमन कृषक प्रश्न मंच पूछथन कहा। तो कृषक प्रश्न मंच में आज के प्रश्न हवे संगवारी हो, आप मन कापी पेन निकाला और लिखा। आज के प्रश्न हवे कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक के दो ठन नाम बतावा। तो संगवारी हो, एकर बारे में अभी हमन चर्चा नहीं करे हन, लेकिन आगे चर्चा करबो कहा। तो आप मन हमार कार्यक्रम ला सुनत रह, अंत तक बने रह, तो एकर उत्तर आप मन ला जरूर मिल जाही। तो एक बार और सुन लेवा संगवारी हो प्रश्न ला, कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक के दो ठन नाम बताहा। तो एकर उत्तर आप मन जरूर लिख के भेजिए संगवारी हो। आप मन ईमेल के माध्यम से भी लिख सकत हा और पत्र के माध्यम से भी। अब चला हमार आज के किसान के कोती क्रम में जाबो कहा। तो मैं गए हैं ग्राम बिलाईगढ़, विकास खंड बिलाईगढ़ के किसान हवे देवानंद देवांगन। ए मन ले, हर धागे में किसान का श्रम, बुनकरी से मिल रहा स्वरोजगार और पहचान, ये विषय में हो रही से मोर बातचीत, तो आवा एला सुन ले वो। ऐसे संगवारी ले भेंट करत हैं जोन मन बुनकर के काम ला अच्छा से करत हैं और ए मन ला संत बिसाहू दास महंत सम्मान ले सम्मानित किया गिस है। तो चला भेंट कर वो हमार संगवारी ले। तो सबले पहले आप मन ला मोर को तिले राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार दीदी, आप मन ला भी।
0: हाँ, आप मन के परिचय बताहा।
1: मोर परिचय है देवानंद देवांगन।
0: हाँ हाँ।
1: पिता बलराम प्रसाद देवांगन।
0: अच्छा।
1: मैं प्रॉपर बिलाईगढ़ के रहने वाला और हमन के काम है बुनाई के। मैं बुनाई के श्रेय से हमारे विभागी जो अवार्ड जो मिलते कोसा बेल्ट ला हमारे बिसाहू दास महंत के नाम से जाने जाते।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और काटन बेल्ट ला राज राजेश्वरी करुणा माता के नाम से जाने जाते।
0: अच्छा।
1: तो मैं कोसा में एक ऐसे पैटर्न बना के दे रहे दीदी जे हा किसान मन के आधारित रिसे।
0: अच्छा।
1: जैसे की साड़ी के आंचल में है ना, आंचल में जैसे की पहली काम हल चलाना होते किसान ला, तो पहली जोताई के काम रिसे बूटी के मैंने वहाँ जो बूटी बनाए रहे ज्यादा से हाथ से, तो मैं हल चलाए वाला रही से।
0: अच्छा।
1: है ना। फिर नेक्स्ट मेरी से वह थरहा लगाए वाला रही से बूटी है। है ना। फिर नेक्स्ट में फिर बूटी रही से।
0: हाँ।
1: तो थरहा लगाए के बाद में बाल बिल्कुल लहलहात जो कुंवार में जो धान हमन देखता है कितना मन सुंदर लगते है ना भाई। तो ऐसे लहलाए वो वाला रही से। ओकर बाद नेक्स्ट वाला जो बूटी रही से किसान हर माने हसिया लेके धान के कटाई करत रही से।
0: हाँ।
1: ओकर बूटी उकेरे रहें।
0: अच्छा।
1: ओकर बाद फिर हमन लास्ट जो बीड़ा बांधन धान ला जो बीड़ा बांधन।
0: हाँ हाँ।
1: है ना। तो ऐसे एक औरत मन के बूटी बनाए रहे जो अपन।
0: अच्छा।
1: बीड़ा बांधत रहे और कुछ महिला मन दो तीन बूटी ऐसे रही से जो बीड़ा ला बो के अपन रास्ता गाड़ा की ओर ले जात रहे।
0: अच्छा। तो आप मन ये सब प्रकार के डिजाइन बना के
1: दे रहे हैं हमन।
0: अच्छा।
1: और लास्ट बूटी ओकर जोरी से।
0: हाँ।
1: कि किसान मन फिर हल चला के माने का बोलते बेलन चला के।
0: हाँ हाँ।
1: जो वो करते मिसाई करते।
0: हाँ।
1: ये सब चीज रिसे।
0: हाँ।
1: तो ओमा हमर जो जितना भी किसान के जो मेहनत है खून पसीना है।
0: हाँ।
1: ओला में बताया रहे दीदी।
0: अच्छा,
1: तो
0: आप मन अपन के बुनकर के माध्यम से बुनाई के माध्यम से ये सब बोला बताया रहा
1: जी।
0: एक खातिर आप मन ये सम्मान ले सम्मानित किया।
1: तो सम्मान में मोला श्रीफल और साल से सन 2000 हाँ 2018 में वैसे तो पुरस्कृत सन रही से 15-16 के।
0: अच्छा।
1: लेकिन गवर्नमेंट के काम की वजह से या कुछ की वजह से हमला नहीं मिल पाई रही से।
0: हाँ,
1: लेकिन
0: हाँ।
1: जो मोला प्रदाय हुई 2018 के 10 तारीख के।
0: अच्छा,
1: 10/2/2018 में।
0: अच्छा।
1: मोला मिले रही से सम्मान।
0: हाँ।
1: तो मैं वही मोर कहे मतलब ये रही से कि किसान मन कितना मेहनत करते मोला मैं बता रहे हूँ।
0: आप मन सही बता रहे हैं।
1: और साथ में मोला 1,00,000 रुपया भी प्राप्त देरी से।
0: अच्छा।
1: ऐसे करके मोला सम्मान। तो मैं वो समय ओपल्ला में कभी जिंदगी में नहीं भूला दीदी।
0: हाँ हाँ। ये तो बात सही है कि कछु भी प्रकार के सम्मान मिले ले ओपल्ला कभी भी भुलाए बनी होए है ना।
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ।
1: और साथ ही साथ ओकर बाद में हाँ अभी पिछले 5 साल तक।
0: हाँ।
1: मैं चयन जूरी कमेटी की चयन कमेटी के सदस्य भी रहे मंत्रालय में।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ हाँ।
0: मंत्रालय में।
1: मंत्रालय में तो एक
0: अच्छा।
1: काम से मोला इतना रुझान और इतना वो है कि मैं छोटे से कस्बा बिलाईगढ़ में रह के।
0: हाँ।
1: मैं इतना मेहनत करें कि गवर्नमेंट के हर प्रदर्शनी ले मैं मतलब पूरा इंडिया लेवल में कहीं भी जगह होते।
0: हाँ।
1: तो ओला में यहाँ गवर्नमेंट के प्रदर्शनी ला करा।
0: हाँ।
1: और आवा घर में अपन जो भी पैटर्न आर्डर कुछ रहे ओला में खुद बनावा और दो चार जन बुनकर लेके भी वो काम ला भी मैं कराए। और ऐसे करत करत दीदी मैं आज एक ठो दुकान भी खोलदा रहे बिलाईगढ़ में कोसा के।
0: अच्छा,
1: जिला बलौदा बाजार जिला और सारंगढ़ जिला में

0: पहली दुकान है कोसा के।
1: अच्छा अच्छा, हाँ। आप मन के कोसा के दुकान,
0: दुकान भी है भाई दीदी।
1: अच्छा अच्छा, हाँ। ये तो साथ बहुत ही बढ़िया बात है।
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ। तो जो ये बुनकर की काम है एला आप मन मतलब कब ले करा था?
0: ये हर हमन के जो काम है रहिसे दीदी,
1: हाँ।
0: हमन ना एक हमन की पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है।
1: अच्छा,
0: हमन कब
1: हाँ।
0: के सीखे है ने काम ले रहा हमन खुद नहीं पता बता
1: हाँ,
0: पाए।
1: हाँ।
0: ऐसे टाइप के है,
1: मतलब ये काम
0: बचपन से बिल्कुल पुरखौती रहा थे और ये काम ला हमन छोड़ना नहीं चाहते हैं दीदी। और ये कर से हमन ला धूप प्यास में सब भटके भी नहीं लगे, जैसे कि आज ये किसान मन है
1: गुजारा
0: में। हालांकि हमन के खेत वेत नहीं है, यही है हमन के खेती है। दिन भर कमाथन दीदी और बढ़िया दो टाइम खाना खाथन,
1: है ना। ये काम तो बहुत ही अच्छा है भैया, हाँ। कि इमें ना धूप लागे ना पानी लागे, है ना।
0: बिल्कुल,
1: मतलब ये
0: बिल्कुल।
1: काम हम 12 महीना चलते
0: हाँ।
1: और इमें ऐसे आमदनी मिलते कि जो नौकरी करने वाला है ओकर ले भी अच्छा से
0: अच्छा
1: आमदनी मिलते,
0: मिलते मिलते हाँ।
1: अगर ये काम अच्छा से कर पाबो तो, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: नौकरी से भी बढ़ करे,
0: हाँ।
1: यह बहुत ही अच्छा काम है कहा, है ना।
0: हाँ।
1: तो ये काम में आप मल्ला आनंद आते?
0: हाँ दीदी, ये काम
1: हाँ
0: मन आनंद आते और मैं जब तक जियत रही हूँ
1: हाँ
0: तब तक मोर पीढ़ी काम ला सिखाते रही हूँ
1: हाँ
0: और ये काम ला आगे बढ़ाए बार वाला मैं प्रेरित करते रही हूँ दीदी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक काम में का आप मन कहूँ ला मतलब रोजगार दे था?
0: हाँ, अब ये दुकान उकान होगी से दीदी,
1: हाँ
0: तो अभी जैसे कि कोरोना काल के बाद में
1: हाँ हाँ
0: काम में हमन के बहुत ढीलापन आ गया है
1: अच्छा
0: और ढीलापन के साथ साथ दोहरी मार कहे जिला कहे जाते जीएसटी वीएसटी ये वो
1: हाँ
0: कुछ कहीं हुई तो आदमी उनके समझ में नहीं आते से हम मन के समझ में नहीं आते से ऐसे
1: हाँ
0: तो है प्रकरण है।
1: हाँ हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: आज धीरे धीरे समझे कि ये काम अच्छा है, जीएसटी वीएसटी भी और काम लग अभी भी गति देथन और जैसे भी ऑर्डर हमन लग मिल जो मिलते
1: हाँ
0: वो हिसाब से हमन ऑर्डर ला बुनकर के माध्यम से वाला करा करके दूसरा मन ला काम दे करके बुनकर मन ला हम
1: अच्छा
0: लोग काम लग जितके जल्दी हो सके ओकरा गति दे के कोशिश करथन
1: अच्छा
0: और
1: ये
0: करत आथन।
1: हाँ भैया, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप मन
0: हाँ
1: खुद रोजगार एकर ले पाए हा
0: जी
1: और
0: जी
1: दूसर मतलब भी रोजगार देवत हा,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: एकर ले वो अच्छा का बात होही, है कि
0: बिल्कुल
1: नहीं।
0: दीदी, हाँ दीदी।
1: हाँ, तो ये बता आखिर में कि ये में एक दिन में आप मतलब कतका इनकम हो जाते लगभग?
0: दीदी हमारे दिवांगन मन के काम कैसे है
1: हाँ
0: ना,
1: मतलब
0: जैसे
1: जबकि
0: कि
1: काम करे ले।
0: नहीं दे, मैं आप लोग बता था जैसे कि हम उनके मेरे के हम तो बुनकर समुदाय है ना, हम बुनकर हम कुछ लेने जाना लेकिन हमारा जो रॉ मटेरियल जो लेथन हमारे मंडी है चापा है रायगढ़ है और यहाँ से हमन वहाँ के जो साव है या बड़े बड़े वो हमारे धागा के विक्रेता है वो मन से हमन डायरेक्ट रॉ मटेरियल ले लेथन।
1: अच्छा
0: जैसे कि लट हाथे लटी है ना, ओला हमला नेचुरल बनाना है तो नेचुरल के हिसाब से धागा वागा यार्नर ये करथन निकालथन और यदि डाई करना है तो लट फिर डाई करके हमन बिल्कुल वेजिटेबल डाई आजकल जो हमन करथन वनस्पति के जो जड़ बूटी कला रहते
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ओकर हिसाब से फन करथन। लेकिन एक काम है जब पहले पहले हो रहे थे दीदी
1: हाँ
0: तो हमला साड़ी जैसे प्लेन साड़ी भी बनाना है ना तो
1: हाँ
0: प्लेन साड़ी हमला एक दिन में तैयार हो जाते
1: अच्छा
0: लेकिन ताना बाना दोनों पहले से बने हुए थे।
1: हाँ
0: यदि हकीकत में यदि देखा जाए
1: हाँ
0: ओकर प्रोसेस ला तो
1: हाँ
0: वही प्लेन साड़ी है 8 से 10 दिन भी लग सका थे यदि
1: अच्छा
0: शुरू से करना चाहता
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: एकर हमन के समय के तादाद नहीं। लेकिन हमन काम ला पहले से करके रखे रहते घर के
1: हाँ
0: हमन आगू लागू करके रखे रहते तो
1: हाँ
0: एक काम है एक जैसे कि प्लेन साड़ी बनाना है तो एक दिन में हमन ला बन जाते जेकर हमन के बुनाई चार्जेस ठहरा था 700 रुपए
1: अच्छा
0: है ना।
1: हाँ
0: तो जैसे कि एक परिवार में आज देखा जाए
1: हाँ
0: काकरो घर में 5 सदस्य है काकरो घर में 7 सदस्य है
1: हाँ बिल्कुल
0: तो सब लगे रहन
1: हाँ
0: और एक दिन में यदि हमन 700 से 800 रुपये भी कमाथन
1: हाँ
0: तो भूति भी जोड़िया तो बाहर कमाए जाबो तो कल ज्यादा मिली
1: हाँ सही
0: है
1: बात
0: ना।
1: है हाँ
0: लेकिन ये छाव के काम करके हमन
1: हाँ
0: नहीं
1: हाँ
0: छोड़न दीदी,
1: हाँ हाँ
0: हमन के पुरखा कभी बाहर के काम नहीं करे तो
1: हाँ
0: हमन बाहर
1: हाँ
0: के काम भी नहीं करन।
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: मतलब इमें अच्छा से आप मन के आमदनी हो जाते, आप मन
0: हाँ
1: के
0: हाँ
1: घर
0: मने
1: परिवार अच्छा
0: बिल्कुल
1: से चल
0: चल
1: जाते।
0: जाते चल
1: हाँ
0: जाते।
1: अच्छा, और यह
0: हाँ।
1: बहुत ही अच्छा काम है कहा, है
0: और
1: कि नहीं।
0: जैसे कि अब प्लेन साड़ी के बात बताएं जैसे कि हम उनके जाला वाला बस्तर बूटा वगैरह के जो आदिवासी जो कल्चर के जो आंचल वाचल वाला है ऐसे भी हम साड़ी भी बनाथन तो वो करीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं है
1: अच्छा
0: ना। ओमा हमला कम से कम 2200-2500 रुपये बुनाई चार्जेस भी मिलते
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: हम बनवाथन तो देथन भी
1: हाँ हाँ हाँ
0: ऐसे है। तो वो हर जैसे कि ज्यादा आदमी है तो बिल्कुल लूम ला हमन 4 बजे घुसना है सुबह तो 7 बजे तक लूम में जब चली ना तो वो साड़ी हमन बिल्कुल 1.5 दिन में 2 दिन में तैयार कर लेते तो
1: अच्छा
0: 2500 रुपया की भी आमदनी हो
1: हाँ
0: जाते
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: करे करे ऊपर रहते। अब ओकर कमाने वाला है हमारे घर में तो
1: हाँ
0: हमन लूम ला खाली नहीं रखन जैसे कि ले भाई मैं लगातार में है 4 बजे।

0: घुसे हैं तब मोर नाश्ता का टाइम हो गए 7 बज गए
1: सही बात
0: है ना। तो ते थोड़ा कन बैठ जाते, मैं नाश्ता करके मैं 1 घंटा घूमिया आराम करी है ना। ताले फिर वो घुसे रही तले बैठे अब मोला रेस्ट दे दारे
1: पारी
0: पारी मोहता था ना कहानी ला। अब ओकर बाद जैसे कि 11 बजे यहाँ से चलते हम नहा ले, मैं नहा के आ गए, वो बेचारा उठे है था नहा खा लो काम करी तल मैं नहा खा के 1 घंटा आराम कर ले तो फिर 1:30-2 बजे वो मैंने फिर वो घुसी।
1: हाँ तो भैया आप मन इतनी अच्छा जानकारी देवा, एक बार आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है, राम राम जय जोहार।
0: आप मल्ला भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो हमारे छोटे से कस्बा रायगढ़ चल के हमारे बुनकर समुदाय के हालचाल जाने बार आए, ओकर ले मैं हार्दिक आप सब मन के अभिनंदन करा था। आप मल्ला भी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़,
1: जय जोहार।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें संदेश कहा, और संदेश के पहली सुनत रहें आज के किसान संगवारी ला, जो मन बहुत ही अच्छा से धागा ले साड़ी वगैरह बनाते हैं और अपन के जो कला है ओला निखारत हैं कहा, और संगे संग स्वरोजगार भी पाते हैं और पहचान भी पाते हैं संगवारी हो, कतका बढ़िया ये बूता काम में बढ़िया मन करत हैं और आमदनी कमाते हैं। तो संगवारी हो आज के नसीहत के विषय हवे छोटे किसानों की समृद्धि का रास्ता कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक। देखा संगवारी हो हमार जो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो छोटे और मंझला किसान भाई बहनी मनवर खेती किसानी ला फायदा के सौदा बनाए बर कम लागत और आधुनिक तकनीक है सबले बड़ा रास्ता है। यानी कि हमन जब खेती किसानी के काम करत हन तो ओमे कम लागत और आधुनिक तकनीक ला हमन अपना के हमन अच्छा से आमदनी कमा सकत हन। जब लागत कम हो ही संगवारी हो तो पैदावार और पैदावार बढ़ी, तब जाके सही मायने में हमला समृद्धि मिली। तो आवाज संगवारी हो जानबो कि कुछ ऐसा आधुनिक और कम खर्चा वाला तकनीक मन के बारे में। तो कम लागत वाली आधुनिक तकनीक में हवे श्री विधि संगवारी हो। धान के खेती पर ये तकनीक हर वरदान है, एमा पारंपरिक तरीका के मुकाबले एमे कम बीजा लागते, सिर्फ 2-3 किलो प्रति एकड़ में बीजा लागते। यानी कि आप मन जब धान के खेती करत है तो ये श्री विधि ला जरूर अपनावा, एमे कम बीजा लागते संगवारी हो और कम पानी भी लागते, खेत ला पानी में डूबो के रखे के जरूरत नहीं रहे। जैसे हमें रोपाई के काम करथन या दूसर विधि से काम करथन तो हमें पानी भर के रखना पड़ते, लेकिन ये श्री विधि में ऐसे खेत ला पानी में डूबा के रखे के जरूरत नहीं रहे, सिर्फ हमें नमी बना के रखना पड़ते कहा, यानी कीचड़ जैसे हमें स्थिति बना के रखना पड़ते माटी में। ऐमे ज़्यादा पैदावार होते संगवारी हो, यानी कि जो कल्ला है कौन से वह ज़्यादा फेंकते जेकर से पैदावार 1.5-2 गुना हो जाते। तो ओकरे सेती ये हर कम लागत वाला आधुनिक तकनीक है श्री विधि। ऐसे ही संगवारी हो जैविक खेती, यानी कि मटका खाद और जीवामृत, बाजार के जो महंगा रासायनिक खाद है यूरिया है DAP है, एकर जगह हमला घर में बने जो गोबर है गोमूत्र है और गुड़ से जो जीवामृत या फिर मटका खाद बनावा, एमा खर्चा एकदम 0-0 है और यह धरती मैया के उपजाऊ शक्ति ला घलो बचा के रखते संगवारी हो। यानी कि हमला जो रासायनिक खाद है एकर उपयोग बहुत ही कम करना है, जैविक खेती करना है संगवारी हो। और कतार बोनी और सीड ड्रिल एक ठन और तकनीक हवे कम लागत वाली, एमे का करते हैं हाथ से छीट के बोए के जगह कतार यानी कि लाइन में बोनी कराओ, एमा कम बीजा लागते और निंदाई कोड़ाई में भी आसानी होते और सब्बो पौधा मन ला बराबर धूप और हवा मिलते कहा। यानी कि सीड ड्रिल विधि से हमन बुआई करथन तो ए वाला कतार में बोथन कहा, तो कतार में बोए बर अच्छा है कहा, यानी कि हमन जो भी जैसे दवाई छिड़कथन खाद उर्वरक जो भी करथन तो एकर बर हमला सुविधा होते, हमला चले बर आसानी।

होते अउ एकर से जो पौधा है ओमन बराबर बढ़ते कह अउ मतलब बराबर मात्रा में धूप अउ हवा मिलते तो ओमन के बढ़ोतरी अच्छा से होते। और संगवारी हो पानी अउ खेत के हमला सही उपयोग करना है, जैसे टपक सिंचाई है, ए में का होते 50% पानी के बचत होते और ए में जो पानी है ओहर सीधा ओकर जड़ में जाके गिरते संगवारी हो। एकर बर हमार सरकार छोटे किसान मन ला एकर बर बहुत ही सब्सिडी देते कह छूट देते। और ऐसे ही संगवारी हो मल्चिंग तकनीक हवे, एमें खेत में अउ प्लास्टिक बिछाते कह यानी मल्चिंग पन्ना आप मन जाना था वह प्लास्टिक बिछा के खेती करते एमा नमी बने रहते हमार खेत में कह और निंदाई के जो झंझट है और ख़त्म ही हो जाते और पानी बहुत ही कम लागते संगवारी हो। ऐसने ही मल्टी क्रॉपिंग यानी कि एक साथ कतको फसल लगाते हैं एला कथे मल्टी क्रॉपिंग, धान के संग मेड़ मा अरहर तिवरा या साग सब्जी लगाथन कह एक यह फायदा एक साथ मतलब सबो प्रकार के फसल हो जाते एक ले अधिक फसल। और एकर फायदा ये होते हमारे छोटे किसान भाई मल्ला अगर एक फसल खराब हो जाते कह तो दूसर फसल है सहारा दे देते संगवारी हो। तो ऐसे ही हवे हमार छोटे किसान मन के समृद्धि के रास्ता कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक। तो संगवारी हो हमला महंगा ट्रैक्टर या बड़खा मशीन खरीदे के जरूरत नहीं है, आजकल छोटे किसान मन बर पावर टिलर या फिर हैंड वियर जोन हर हवे निंदाई मशीन आते जेकर से मजदूरी के खर्चा उस समय दोनों बाँचते संगवारी हो। तो खेती में असली कमाई ओला नहीं कहे जाए जेकर उपज ज़्यादा है, असली कमाई ओला कहे जाते जेकर लागत कम और बचत ज़्यादा है। तो संगवारी हो आप मन भी कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक ला अपनावा, ये हर ही हमार किसान संगवारी मन के समृद्धि के रास्ता हवे और अच्छा से ये विधि मला अपना करके आमदनी कमावा। तो संगवारी हो हमार बातचीत तो चलते रही कहा तो मैं कहत रहे एक ठन सुघर अकन के लोकगीत सुन लेते हैं ओकर बाद चर्चा में फिर आगू बढ़ते हैं। तो आवा संगवारी हो सुन लेबो ये लोकगीत ला।

0: तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहे हैं सुघर अकन के लोकगीत ला, जला गारिन है भैया लाल हेड़ाऊ और मन के साथी मन। तो संगवारी हो, सही बात है, हमार किसान मन धन धन है, बहुत ही बढ़िया परिश्रम करके अनाज उगाते कह। और देखा संगवारी हो, अब बेरा हो गिस ना भेंटवार्ता सुने के। तो खरीफ में हरी खाद की उत्पादन एवं प्रयोग विधि विषय पर श्याम कुमार पटेल ग्राम परसाडीही विकास खंड सारंगढ़ के कृषक ले रामविलास पटेल के भेंटवार्ता सुनबो, तो आवाएला सुन लेबो।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। भेंटवार्ता के अंश में हमर बीच ऐसे किसान, प्रगतिशील किसान उपस्थित हैं जो मन अपन के नवाचार, नवा तकनीक, नवा काम के कारण से जाना जाते हैं। संगी हो, ये ऐसे किसान हवे जो उनकी सरकारी योजना से लाभान्वित होते हैं, संग में दूसर ला भी अपन के काम काज से लाभान्वित करते हैं। कहे के आशा ये है संगवारी की अपन के खेती किसानी से दूसर ला मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे किसान उपस्थित हैं श्याम कुमार पटेल जी। नमस्कार श्याम कुमार।
2: नमस्कार भाई राम, मोर नाम श्याम कुमार पटेल, मैं ग्राम परसाडी तहसील

0: सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बराड़गढ़ के रहुया हूँ।
1: हाँ, तो श्याम कुमार पटेल जी ये बता कि खरीफ में जैसे अभी आप मन कहाँ का फसल लेता।
0: मूंग है,
1: हाँ हाँ
0: उड़द है, ज्वार है और रागी लगा रहे हैं।
1: हाँ हाँ
0: तो रागी अभी बेचई होगी इसना, ज्वार बढ़िया हुई से।
1: अच्छा
0: और अभी खरीफ बर फिर तैयारी करे बर ढेंचा हरी खाद के रूप में खेत में
1: अच्छा
0: लगाए हूँ।
1: अच्छा तो ढेंचा जोन कहा, ये ढेंचा कहते यार का होते, एक बारे में बताइए।
0: ढेंचा ला जैसे हम पुराना वही में कथन ढनढनिया हमारी छत्तीसगढ़िया ही करा। बाकी ढेंचा एक दलहनीज फसल के रूप में है, दलहन ओकर दलहनीज फसल में आते ओहर। ओकरो जड़ी में मतलब नाइट्रोजन फिक्स करे के बैक्टीरिया बनते, तो अहू और ओमे गांठ बने हैं, अहू में उसने बनते
1: अच्छा,
0: और ओलहरी खाद के रूप में उपयोग करथन।
1: तो ये ढेचा की खेती में जैसे बात करथन आप मन, अभी आप ओला चिकला मताए की स्थिति में आ गए ना आप कहा, तो
0: हाँ,
1: ऐसे जो ढेचा है कर खेती करे के पहली तैयारी कैसे कर रहा है ला बता।
0: खेत के जोताई कर देथन दो बार, ओकर बाद ओमे पाटा लगा के बो के फिर पाटा लगा के पानी डाल देथन, फिर उग जाते और जल्दी बाढ़े के वही रहते और जल्दी जल्दी बाढ़ते
1: अच्छा, सबले पहली तो खेत की जुताई कर था,
0: जोताई करते।
1: और जुताई के बाद फिर वहां
0: जोताई करे के बाद पाटा मारते थे एक घर,
1: यानी कोपर लगाते
0: हाँ
1: था।
0: कोपर लगा के
1: हाँ
0: बो के
1: हाँ
0: में दतार दा या जो ला हम सुहागा कथन
1: अच्छा अच्छा
0: सुहागा चला देथन।
1: अच्छा अच्छा तो कर से फिर वो पानी पुलो बनी लागे।
0: पानी पलोए में लागत है, पानी नहीं गिरे है तो, अगर गिरे है तो अभी बो दे ले पानी में जाग जाते।
1: अच्छा, और सिंचाई फिर कैसे करना पड़ते हैं।
0: सिंचाई डायरेक्ट जत को भी पानी हो जाए में कम ज्यादा नहीं लागे, वैसे नहीं है पड़
1: लेकिन फिर
0: जाने
1: भी तो
0: चाहिए।
1: लागत हुई कि
0: हाँ
1: आप मन कैसे दे रहा पानी ला।
0: अभी उन्हें थोड़े से कम रूप में हल्का सिंचाई कर रहे हैं, हटा हटा के पाइप
1: अच्छा,
0: ला हटा दा या एक अलग अलग साइड में पलो दा वही बना के कैरी कैरी थोड़े से।
1: ज्यादा अगर पुल हो तो जल की ही भी कहा तो थोड़ा
0: हाँ
1: सी
0: ज्यादा
1: भी।
0: नहीं जरूरत पड़े।
1: तो ये ढेचा के जो खेती है, ये खेती में बात करथन तो खाद वाद देना पड़ते कि नहीं पड़े
0: खाद नहीं देना पड़े,
1: यार, स्वतः उगते।
0: स्वतः उगते और स्वतः बहुत बड़वार चीज है।
1: तो आप मन जो अभी मता था मताने वाला है, कुछ ला कर भी जा रहा, तो ये हर बात करते तो हर कतका दिन में तैयार हो जाते हैं।
0: 45 से 50 दिन में तैयार हो जाते हैं।
1: 45 से 50 दिन में तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो एकर लाभ का है आप मन का देखा थे ला, कैसे दृष्टिकोण से लगाए।
0: एकर लाभ ला तो अतकी है कि गने नहीं सका है, अनगिनत लाभ है।
1: अच्छा
0: तो मैं जो जो प्राथमिक रूप से बताया था कि ये में एला पलठिया तो केचुआ मन के अतकी उत्पाद हो जाते हैं जमीन में कि हाथ में धरिया तो पूरा वही बगे चलते हैं, उसकी केचुआ हो जाते हैं,
1: अच्छा
0: जैविक कार्बन बढ़ जाते हैं।
1: हाँ
0: फसल देखा जाए तो फसल मन के जो सफेद जड़ जो ना खाना बनाते धरती लेते उसकी कन के सफेद जड़ के वो यह पूरा बढ़ जाते, तो उपज भी बढ़ जाते, जमीन भुरभुरी हो जाते, दल ओ मतलब जल संधारण करे के जल रोके के क्षमता बढ़ जाते, मिट्टी है
1: अच्छा
0: थोड़े से एकदम कलर है भी एकदम से अलग चमक कलर आ जाते।
1: अच्छा तो आप मन कतका बछर ले ढेंचा लगाया
0: यह
1: था।
0: 3रा साल हो गए।
1: 3रा साल हो गए तो लगाया था, और जोन खेत में जैसे नहीं लगाया था तो खाद में फसल में उमे आप मन अंतर देखकर मिली से
0: बहुत ज्यादा अंतर मिलत है।
1: बहुत ज्यादा मिला
0: हाँ,
1: थे।
0: आधा लागत है, आधा लागत में ही ज्यादा और उपज दे थे, और जो दाना के वैरायटी के चमक मन भी अलग आते हैं।
1: अच्छा, तो एकर बीज कहाँ से व्यवस्था कर रहा।
0: बीज अभी कृषि विभाग वालों बांटीन है आधा
1: अच्छा
0: रेट में,
1: अच्छा
0: 110 रुपए किलो के हिसाब से
1: अच्छा कृषि विभाग के डहा
0: कृषि
1: ले मिले
0: विभाग
1: बीज
0: के
1: से।
0: मिली से अपन सहयोग करीन है।
1: अच्छा, और
0: तो
1: ये बात है कि जो बीज है उकर बुआई में कुछ किलो कुछ लाख थे कि अतका किलो 1 एकड़ में डालना है, एकर कुछ मापदंड रही थे क्या
0: मापदंड 10-12 किलो बोना रहते
1: 1 एकड़ में।
0: 1 एकड़ में।
1: अच्छा, मतलब कि शुरुआत में खर्चा करिया और फिर जैसे बढ़ी और हरा हो जाए ओकर बाद एक बोला का कहने चाहिए सड़ोना पड़ते
0: सड़ोना
1: है
0: पड़ते हैं।
1: ना। पहली गांव घर में होत रही से कि बन कचरा मन जाम जात रही से तो ओकर बाद खेत ला बढ़िया से जुताई करें वाला सड़ोए तो एक खुशबू आत रही से।
0: हाँ, अहू में उसने ना महक आते एकदम से, और केचुआ मन अतकी ज्यादा ऊपर आ जाते हैं कि
1: लेकिन आजकल का है वो बन मारे के दवाई आ गई इसने तोला डाल देते हैं जुताई में आसानी हुई
0: हाँ,
1: करके
0: ओकर बहुत ही ज्यादा नुकसान है। किसान
1: नुकसान
0: भाई
1: है।
0: मन नहीं समझ पाते हैं कि पैराक्वाइट ऐसे चीज है कि ओकर जहर काटे के दवाई नहीं है, अगर
1: अच्छा,
0: शरीर में चल दिस तो नुकसान करे बिना नहीं छोड़े वह,
1: तो
0: तो
1: बहुत
0: ओकर
1: खतरनाक हवे का था।
0: खतरनाक हवे वाला किसान भाई मतलब जागरूक होना चाहिए।
1: तो जो ढेचा की खेती है, खेती खेती में कुछ चीज ला भी ध्यान रखना पड़े थोड़ी सावधानी।
0: खेती ढेंचा एकदम सरल चीज है, बोदा और मतदा और बोदा ऐसे टाइप के कि एकदम सरल से सरल चीज 45 दिन में तैयार हो जाते खाद हर।
1: अच्छा 45 दिन में हो जाते
0: तैयार हो जाते।
1: अच्छा अच्छा
0: एमे अलग से जो खरपतवार है उन बाढ़े भी सके हद की तेज बाढ़ते कि आने मतलब दवा के ना खत्म कर देते।
1: अच्छा जैसे कुकुरमुता होते हैं
0: उसमें छे
1: हर कुछ कुछ घास ऐसे होते जो एकदम तेज गति से
0: तेज गति से बढ़ते और आने मतलब बढ़ नहीं दे।
1: अच्छा तो श्याम कुमार जी ये बता कि जो ढेचा के खेती के बारे में बात करते हैं तो आप मन इला 3 साल ले करत आ था और 3 साल में आप मन कतका एकड़ क्षेत्र में इला अपन प्रयास करा था कि करता कतका क्षेत्र में लगाया है आप मन।
0: अभी पहले तो 1 एकड़ 2 एकड़ में लगाते हैं, अभी 4 एकड़ में लगाए हैं और मोर देखा देखी कहे हैं तो कम से कम हमारे गांव में 15-20 एकड़
1: लगे है। अच्छा और वो ऐसे करता है एक साल वो खेत में एक साल वो खेत में ऐसे अल्टरनेट करता है कि कैसे करता
0: है? अभी में एलाय है कि 3 साल तक रेगुलर लगाना है।
1: अच्छा
0: तो पानी के देखते हुए मानसून कम आगू पीछू तो जतकी में लगाए थे तो 3 साल तक रेगुलर लगाना है उसे पहले करके चला था।
1: अच्छा अच्छा एक खेत में 3 साल तक
0: रेगुलर अच्छा,
1: ताकि वो माटी बढ़िया अपन आप में सुधार हो जाए का हाँ, तो और वास्तव में देखना नहीं आजकल हार्वेस्टर ट्रैक्टर हर काम हर मशीन से होते और वजन वाला चीज रहते तो हर दबाते तो माटी भी दब के कठोर हो जाते हैं और पहली वो चीज नहीं
0: रही से
1: है ना तो ये सब चीज भी है। और पहली तो नांगर जोते तो ढेला निकले तो गोड़ में खुंदिया तो और बिला जाए है ना और आजकल देखिए तो उल्टा छिला जाते है ना तो ये सब केचुआ की कमी है या हमर दबाव भी पड़ा थे कहन और एक प्रकार से रासायनिक खाद के आता धोरा उपयोग भी एमा कर रहा है। तो श्याम कुमार पटेल जी का कहना चाहिए किसान भाई?
0: मैं किसान भाई मतलब यही की है कि सबसे सस्ता और अच्छा है गोबर गरवा नहीं पाल सकत हन निकुर संग पालना तो जरूरी है लेकिन न
1: हाँ।
0: अगर जरा से भी सुविधा है तो ढेंचा के उपयोग करके खेत के ओइला बनाया जाए मिट्टी सुधारा जाए। अभी खेत बचाओ अभियान चल रहा है तो खेत में काला बचाना है मतलब खेत के जीवाणु
1: हाँ
0: बैक्टीरिया वही मतलब बचाना है तो आओ संगी हो सब जी मिल के काम लागे बढ़ाऊं
1: हाँ
0: और सब जी एक हाथ सरकार के एक हाथ हमार करके हाँ, कदम बढ़ा के
1: चलना पड़ी हाँ और सरकार कदम बढ़ाते तो हम कदम बढ़ाना पड़ी और हाथ बढ़ाते तो हम हाथ बढ़ाना पड़ी और मिलजुल के काम करना पड़ी। चलो बहुत सुगर जानकारी साझा करे श्याम कुमार पटेल जी एक बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: राम राम जय जोहर सर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुने संदेश कहा और संदेश के पहले सुनत रहे हैं रामविलास पटेल के भेंटवार्ता, जोन में किसान संगवारी श्याम कुमार पटेल हैं। एमन हरी खाद के कैसे उत्पादन करत हैं और कर कैसे प्रयोग विधि है ओला भी बताइन बढ़िया से, और संगे संग ओमन मोटा अनाज के भी खेती करत हैं। तो संगवारी हो, ऐसे ही हमार आज के टिप के विषय भी है कि खरीफ में श्री अन्न मिलेट अपनाएं, कम लागत में ज़्यादा लाभ कमाएं। तो संगवारी हो, अभी खरीफ के सीजन चलत है कहा, और ये वक्त श्री अन्न मिलेट यानी कि मोटा अनाज के खेती करना हमार किसान भाई बहनी मन पर एक नंबर के सौदा साबित हो सकत है। यानी मोटा अनाज में कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा ये सब्बो फसल हर आते कहा, ये सब्बो ला हमन श्री अन्न या फिर मोटा अनाज भी कहथन। एमा लागत बहुत कम आते संगवारी हो और मुनाफा तगड़ा मिलते। अब देखा खरीफ सीजन में हमन ये जो श्री अन्न है एला अपना के अपनाबो तो हमला का बड़खा फायदा होही। सबले पहली तो कम लागत और ज़्यादा फायदा, यानी कि हमें लागत कम लागते और ज़्यादा फायदा मिलते, और खातू पानी के कम जरूरत पड़ते। श्री अन्न ला ज़्यादा रासायनिक खाद यानी कि यूरिया डीएपी के जरूरत नहीं पड़े। यह कम उपजाऊ भूइया यानी कि कम उपजाऊ भूइया में भी अच्छा से पैदावार दे देते। बगैर दवाई के यह फसल हवे संगवारी हो, एमा कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के प्रकोप बहुत ही कम होते, जेकर से दवाई छिड़के के खर्चा हर बाँच जाते। और यह सूखा रोधी यानी कि पानी के चिंता ले मुक्त है। हमार

0: छत्तीसगढ़ में कतको ऐसा इलाका है जहां पानी के थोरकुन कमी रहते या फिर पानी गिरे के भरोसा नहीं रहे। तो ये श्री अन्न मन ला बहुत कम पानी लागते, अगर पानी कम भी गिरही तभो ये फसल मन सूखा ला सह के बढ़िया से पैदावार दे देते संगवारी हो। और एहर सेहत पर भी घलो नंबर वन हवे। श्री अन्न सिर्फ फायदा के खेती नहीं है, यह पोषण के खजाना है। एमा भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम और फाइबर मिलते, यह तो शुगर और बीपी वाला मन पर तो एकदम अमृत बरोबर आए संगवारी हो। तो एकरे सेती आप मन ये खरीफ में श्री अन्न मिलेट के खेती ला अपनावा और ज़्यादा लाभ कमावा और संगे संग अपन के सेहत ला अच्छा रखा। तो संगवारी हो एक ठन और सुघर अकन के लोकगीत सुन लेते, नौकर बाद फिर चर्चा कोती आगू बढ़ते।
1: Thank you.

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहन सुग्घर अकन के लोकगीत ला, जला गा रहीन है ललिता शर्मा और उनके साथी मन। और संगवारी हो, हमार चर्चा के अभी विषय है वर्षा के समय जल जनित रोगों से रहें सावधान। देखा संगवारी हो, बरसात के दिन आगे है कहा, और ये मौसम में चारों कोती हरियाली तो दिखते पर अपन संग कतको बीमारी ला भी लेके आते। संगवारी हो, बरसात में सबले ज़्यादा खतरा जल जनित रोग यानी कि पानी से फैले वाला बीमारी मन के रही थे। तो बरसात में फैले वाला मुख्य बीमारी हवे संगवारी हो, जैसे डायरिया यानी कि जोन लहमन उल्टी दस्त कहथन, गंदा पानी पिए ले या फिर दूषित खाना खा ले पेट बिगड़ जाते, और लइका मन ला एकर ज़्यादा खतरा बने रही थे। संगवारी हो, ऐसने ही पीलिया हवे, टाइफाइड हवे, हैजा हवे, और पीलिया है जब गंदा जब पानी में गंदगी मिल जाते तो वो पानी ला पिए से जो लीवर है उसमें खराबी आ जाते, जेकर से आँखी और शरीर पीला दिखे बर लगते। ऐसे ही टाइफाइड है संगी हो, यह भी गंदा पानी और बासी दूषित खाना खाए ले यह फैलते कहा। ऐसे ही हैजा है, यह मक्खी मन जब गंदगी में बैठ के हमार खाना या पानी में बैठते तो हैजा जैसे बीमारी भी फैल जाते। तो एकर से हमला सावधान रहना है संगवारी हो, और एकर से बचे के उपाय हवे ओला अपनाना है। तो पानी ला हमला उबाल के पीना है, जैसे बरसात में कुआं नलकूप या नल के पानी में गंदगी मिले के डर रहते कहा। ऐसे ही खाना ला ढक के रखना है, आसपास पानी जमा झन होने देना है यानी कि आसपास पानी हमला जमा नहीं होना है, और हाथ धोए के जो आदत है ओला बनाना है। टॉयलेट के बाद हमला साबुन से या फिर हैंड वॉश से अच्छा से हाथ धोना है। ऐसे ही संगवारी हो, हमला ये सबो उपाय ला अपनाना है, और वर्षा के समय ये जो जल जनित रोग है एकर से हमला सावधान रहना है। तो आवा संगवारी हो, एक ठन और सुघर अकन के लोकगीत ला सुन लेबो, ओकर बाद फिर चर्चा करबो।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें ये लोकगीत लगा जेला गा रही हैं गंगा दास मानिकपुरी मन के साथी मन। तो संगवारी हो, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष। तो संगवारी हो, हमार लइका मन ला संपूर्ण टीकाकरण कराना जरूरी हवे। काबर जरूरी हवे? काबर कि ये टीका हर सुरक्षा कवच के काम करते। संगवारी हो, बच्चा मन के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ओला बढ़ाते, जे कल ले भविष्य में होने वाला जो गंभीर संक्रमण है ओकर ले लइका मन सुरक्षित रह सकें। कुपोषण और मृत्यु दर में कमी आते। संगवारी हो, समय में जब संपूर्ण टीकाकरण करा ले जो बाल मृत्यु दर है ओमें भारी कमी आते और बच्चा मन के शारीरिक और मानसिक रूप से ओमन स्वस्थ रहते हैं। और यह निःशुल्क सेवा है संगवारी हो, सरकारी अस्पताल या फिर स्वास्थ्य केंद्र या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में ये सब प्रकार के टीका है बिल्कुल मुफ्त में लगाए जाते संगवारी हो। और टीकाकरण कार्ड मिलते बच्चा मन के जन्म के समय, तो ये कार्ड ला हमला हमेशा सुरक्षित रखना है। काबर कि एमे बच्चा मन के अगला टीका के तारीख का विवरण हमें लिखा रहते, तो ये सब तारीख का विवरण ला देख के हमला लइका मन के सब प्रकार के टीकाकरण ला करवाना है। यदि कोई भी टीका कोनो वजह से कोनो कारण से छूट गिसे तो तुरंत हमला नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और एनएम और कार्यकर्ता मन से संपर्क करना है। तो ये तो ही संगवारी हो संपूर्ण टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष। तो आप मन भी अपन लइका मन के सबो टीकाकरण ला करवावा। तो संगवारी हो, मोर जाए के बेला हो गए ना कहा, तो जात जात जम्मो संगी संगवारी मन ला सुमित्रा पटेल के राम राम, जय जोहार।

कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण अभी हो रहा था। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए

कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। गैर फिल्मी गीत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए हुए इस गज़ल को। शायर है फराज हमीदी।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन

का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक के गाए हुए इस गीत को। रचना है समीर की, संगीत पारंपरिक।

फाल्गुनी पाठक के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शागिर्द का ये गीत, स्वर लता मंगेशकर का, मजरू के शब्द रचना संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान के गाए हुए इस गीत को। शैलहाला की शब्द रचना है, संगीत है तुरास का, फिल्म का नाम गुजारिश।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए, अब सुनते हैं कुमार सानू और उदित नारायण के स्वर में राहत इंदौरी के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में ढाला है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है इश्क।

0: कुमार सानू, उदित नारायण और साथियों के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार होंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री

श्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घट

0: कर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक को ने जस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: गुड इवनिंग।
7: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर रात्रि के 9 बजे। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
8: का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर फिल्म का नाम अनुरोध।

श्रोताओं, कल कार्यक्रम आज के फनकार सुबह 9:30 पर केंद्रित रहेगा फिल्मकार गुरुदत्त पर, और रात 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेता संजीव कुमार पर। आप जरूर सुनिएगा आज 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित है, क्योंकि आज है अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, बैराग फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को

0: ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, आपको सुनवा रहे हैं अब आनंद बख्शी के बोलों को। सुरों में ढाला है एसडी बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने ये गीत फिल्म चुपके चुपके से।

0: कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चरस से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: मुकेश की आवाज में सुनिए उपासना फिल्म का ये गीत, इंदीवर के बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर।

अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, चितचोर इस फिल्म का गीत येसुदास और हेमलता की आवाजों में। इस गीत के गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार, आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।
1: बच्चे

दो कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

मंजू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की इस शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू।

गीत के बाद दर्शकों के बीच एक अलग इमेज बनी नीतू सिंह की, और फिर नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे, ढोंगी।

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन, द बर्न

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा, काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर लिया।

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का,

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की, और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना है।

0: अभिनेत्री नीतू सिंह पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे शोध स्वर और आलेख अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें आप

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन क्षय गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत पराया धन। आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: आपने अपने रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत पगला कहीं का। आइए, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। हसरत जयपुरी की शब्द रचना है और जिस

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत,

0: गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: पत्थर के फूल, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम के स्वर में। रविंद्र रावल के लिखे हुए गीत को संगीत से सवारा है राम लक्ष्मण ने।

0: यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में इंदिवर के लिखे हुए इस गीत को, जिसे सुरों में पिरोया है बप्पी लहरी ने। फिल्म का नाम आँखें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए हम आपको सुन पा रहे हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गीत। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक के हैं। मजरू की शब्द रचना है, संगीत है आनंद मिलिंद का।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली के गाए हुए इस गजल को। शायर हैं दाग दहलवी।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं राजेश जौहरी और शिखा दत्ता के लिखे हुए इस गीत को, जिसे संगीत से संवारा है हरिहरन ने, स्वर है कॉलोनियल कजिन्स के।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है,

0: और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था। और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में अभी आपने सुना भूपिंदर सिंह के गाए हुए इस गज़ल को, शायर थे राजेश जौहरी। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। आइए कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण के गाए हुए इस गीत को, रचना है फैज अनवर की, संगीत निखिल विनय का।

0: उदित नारायण के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलदस्ता गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से रात्रि के 11 बजे ही। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।